आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब प्रारंभ होती है।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचार की प्रतीक्षा करें।

0: आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व

0: विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। 6:05 हो रहे हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम से।
3: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात परम सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मो दयापरः। अर्थात हमारे जीवन में शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनेगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी आज सुनेगा प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से सुनेगा त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार गिरीश कर्नाड पर।

सुबह 10 बजे से सुनवाएंगे आपको पिटारा। इसके अंतर्गत सैली लॉयड के सितारे, इसके अंतर्गत सुनेगा पार्श्व गायिका कमल बरोट से कमल शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से रंग तरंग, यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12:05 से, सुरीला सफर दिन में 1 बजे से। दोपहर 2 बजे से सुनेगा त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2:30 से, सखी सहेली, इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे। आज के विषय हैं विश्व मधुमक्खी दिवस, भाषाओं से जुड़ा संस्कार, साड़ियों का संसार, तंचोई साड़ी, शब्द हमारा, विचार आपके के अंतर्गत सद्भावना, व्यंजन के अंतर्गत ठेकुआ और दाल पीठा। संवादक है मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से सुनेगा पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से, शाम 5:30 से सुनिएगा तराने नए पुराने।

6:30 से सुनेगा झरोखा, 6:35 से सुनवाएंगे संध्या रंजन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम सुनेगा जयमाला, शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनवाएंगे आपको राग अनुराग। रात 8:00 से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा प्रहसन खरीदा हुआ दुख, लेखन शोभा रस्तोगी का, निर्देशन दुर्गा मेहरोत्रा का। और रात 8:15 से चित्रलोक। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9:00 से, रात 10:00 से सुनेगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से ढलती जाए रात, और रात 11:00 से रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन है। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी बलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

0: सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: नमस्कार। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला के माध्यम से हम भक्ति रस की वर्षा से भीग रहे हैं और विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप जलोटा जी। नमस्कार अनूप जी।
2: नमस्कार जी।
1: गंगा जमुना के तट पर लगातार आपके स्वर में और आपके पिताजी के गाए भजन गूंजते रहते हैं, लेकिन आज जगत में बहुत ही कोलाहल है। जो संस्कार भजनों के हमें मिले वो नई पीढ़ी से नदारद है। ऐसे में भक्ति संगीत की ये रसधारा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आप हमें बताएं। और कबीर के अनगिनत भजन आपने गाए हैं, तो कबीर के भजन के जरिए आप क्या संदेश देंगे सभी श्रोताओं को?
2: कबीर ने जो जो लिखा है, जो देखा है वो लिखा है। उन्होंने हमेशा समाज की सच्चाइयों को अपने भजन के माध्यम से उतारा है। तो कबीर जैसे दार्शनिक दूसरे नहीं है, कबीर जैसा यथार्थ बात करने वाला कोई नहीं है, सच्ची बात करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम कबीर को केवल कवि ही नहीं, समाज सुधारक भी मानते हैं।
1: जी जी।
2: कुछ भजन हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, जन्म तेरा बात वहीं बीत गयो, मत कर मोह तू, न जाने कितने भजन हैं। मैं आपको कबीरदास जी का एक भजन सुनाता हूँ।
1: जी।

इस भजन के माध्यम से कबीर ये समझा रहे हैं कि अलग अलग अवस्था में मनुष्य अलग अलग काम करता है, एक काम करना भूल जाता है, भगवान का नाम लेना। तो इसके भी कुछ कारण होंगे क्यों भूल जाता है। उन्हीं कारणों को समझाया है कि मनुष्य क्यों भूल जाता है भगवान का नाम लेना।

0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा हमें। अनूप जी, आपकी भक्ति रचनाओं में जीवन दर्शन समाहित है और वो दर्शन जैसे मन में समा जाता है। तो इस वक्त कोई ऐसा भजन याद आ रहा है आपको, हमारे श्रोताओं को सुनाएं कुछ पंक्तियां?
1: कबीर को सुनाता हूँ
0: जी।

0: तो श्रोताओ, कबीर की इस रचना में हम डूब गए थे, खोसे गए थे। ऐसी लागी लगन, अनूप जलोटा से बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी नवी कड़ी। अब आज की ये कड़ी बस यहीं तक।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में बरखा फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी
0: कहिए ना
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662 तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात सुनिए अपनी पसंद के गाने आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी
0: देखो जी बहार आई बाहों में
1: के जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे

0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में बाप बेटे इस फिल्म का गाना। इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

0: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से भूल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर 7:15 हो रहे हैं। आइए आपको बता दें आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 7:30 से 8 बजे तक आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। 8:15 पर सुर संगम। 8:30 से 9 बजे तक प्रणाम अयोध्या। इस कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत विश्व मधुमक्खी दिवस विषय पर चर्चा होगी। सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय और साहित्यिक अवदान विषय पर वार्ता प्रसारित की जाएगी। वार्ताकार होंगे डॉक्टर बिंदीमणि त्रिपाठी। 9 बजे आप सुनेंगे आपके संदेश आपके गीत। 9:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 12:30 से 1 बजे तक अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोकरंग। 1 बजे आप सुनेंगे

कार्यक्रम कुछ तुमने कहा 2 बजे से सुनेंगे आप कार्यक्रम गीतांजलि। 2:30 पर अंगना कार्यक्रम, चर्चा का विषय होगा विश्व मधुमक्खी दिवस, सुमित्रा नंदन पंत जयंती, साथ ही साथ चर्चा होगी घरेलू सुझाव स्वास्थ्य पर। 5 बजे से 5:30 तक प्रस्तुत होगा युवाणी, जिसमें चर्चा का विषय होगा विश्व मधुमक्खी दिवस, व्यक्तित्व विशेष में चर्चा की जाएगी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। खेल संसार के साथ हीट वेव बेजमान जीवों की सुरक्षा के लिए जरूरी, साथ ही साथ सुनिएगा कुछ गीत। 5 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 6:10 से 6:20 तक प्रस्तुत है श्याम सुहानी। 6:30 से 6:45 तक प्रस्तुत होगा हमारा कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। 6:45 पर कार्यक्रम कृषि जगत में चर्चा का विषय होगा विश्व मधुमक्खी दिवस, भेंट वार्ता के अंतर्गत आप सुनेंगे एक प्रगतिशील कृषक मधुमक्खी पालक से भेंट, वार्ताकार होंगे दया शंकर और आपसे बातचीत की है पूनम वर्मा ने। 7:30 पर विशेष भेंट वार्ता, आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी अयोध्या के स्टूडियो में श्री अनिल श्रीवास्तव अपर महानिदेशक प्रसार भारती से उष्मा वर्मा द्वारा की गई बातचीत। 8:15 पर गीत गुंजन, 9:15 पर महफिल गजल कार्यक्रम, 9:30 पर हेलो अयोध्या सजीव फोन इन कार्यक्रम और समाचार प्रसारित किए जाएंगे अपने नियत समय पर। जुड़े रहिए हमारे साथ, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन अयोध्या।

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 होने को है। आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुनिए विज्ञापन संदेश और उसके बाद सुनिएगा प्रादेशिक समाचार।
1: रखने के लिए प्रेरित करेगा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं विश्व मधुमक्खी दिवस की। विविधा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा को। मिलेंगे नए विषय के साथ फिर। तब तक के लिए बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। सुबह के 7:20 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ संदेश।
2: देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त

0: करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जन कल्याण, सुशासन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष तौर से चर्चा की गई। बैठक से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने इसे सहकारी संघवाद, समन्वित विकास और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल को नई दिशा देने वाला मंच बताया। श्री योगी ने कहा कि ये मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल से लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 98.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। एक रिपोर्ट।
1: यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। इस समय राज्य में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी सहित कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ओडिशा के भुवनेश्वर में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार देश में किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता।

0: और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उन्होंने बछरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। श्री गांधी ने रायबरेली में पीएससी के 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद आज भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुआई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी।
1: भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और संबंधित सभी राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में हुए मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। कल शाम को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। जवाबी बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 19 ओवर और एक गेंद पर 3 विकेट खोकर 225 रन हासिल कर अपनी जीत दर्ज कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार

0: और ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आप

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। 7:31 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अमृत कलश।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: रविंद्र सपने की आवाज में सुनिए ये गजल।

0: सुनाथिल सखी सुनाथिल कार्यक्रम मंगनामा होय वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनाथे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 8303991111 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाए जन जन की सेवा में शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं तथ्य के लिए लोकप्रियता और सत्य के लिए प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।

0: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
1: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
0: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
1: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
0: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
1: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
0: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
2: आकाशवाणी अयोध्या।
0: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत कलश, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। कृपया समाचार की प्रतीक्षा करें।

0: जाने
1: आने लगा। तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: घर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग

0: 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बुले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
4: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हो और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
4: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
5: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग

0: निरोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संगम।
5: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
6: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।

0: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसान वाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
1: इसी के साथ कार्यक्रम अमृत कलश अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
3: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रिचा का नमस्ते। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से जीव की जिसके बिना हमारी थाली में खाना मुश्किल हो जाए। हैरान है ना आप सुन के? जी हाँ, बात हो रही है

मधुमक्खी की। 20 मई को विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस या वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। इस दिन हम उन नन्ही मेहनती मधुमक्खियों को याद करते हैं जो बिना शोर के हमारी दुनिया को चला रही हैं। दोस्तों सोचिए, एक बार एक मधुमक्खी पूरे दिन फूलों से फूलों पर घूमती है। वह परागण करती है, इसी से आम, सेब, सरसों, बादाम, तरबूज और सैकड़ों फसलें पैदा होती।

तरबूज और सैकड़ों फसलें पैदा होती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के लगभग एक तिहाई भोजन का सीधा संबंध मधुमक्खियों से है। अगर मधुमक्खियां कम हो गईं, तो फल फूल कम होंगे, किसानों की आय घटेगी और हमारी सेहत भी प्रभावित होगी। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक चम्मच शहद बना पाती है। एक छत्ते में 20,000 से 60,000 तक मधुमक्खी रह सकती है। वे 5 किलोमीटर तक फैली फूलों की खुशबू सूंघकर पहुंच जाती हैं। तो आज इस दिन हम क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत आसान काम। अपने घर के आंगन, छत या बालकनी में तुलसी, गेंदा, नींबू, सरसों या कोई भी फूल वाले पौधे लगा दीजिए। बाजार से लोकल शहद खरीदिए। इससे हमारे किसान भाई बहन और मधुमक्खी पालक खुश होंगे। कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कम कीजिए, खासकर फूलों पर। बच्चों को मधुमक्खियों के बारे में अच्छी बातें बताइए, डराइए नहीं। मधुमक्खियां हमें सिर्फ शहद नहीं देती, वह हमें प्रकृति के संतुलन की याद दिलाती हैं। अगर हम इनकी रक्षा करेंगे तो ये फल फूल और स्वास्थ्य सब देंगे। तो चलिए आज के इस विश्व मधुमक्खी दिवस पर हम वादा करें कि हम इन नन्हे दोस्तों का साथ देंगे, ज्यादा से ज्यादा फूल लगाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, जब धरती पर फूल खिलते हैं तभी मधुमक्खियां गुनगुनाती हैं। फूल और प्रकृति का यही रिश्ता हमारे जीवन में रंग भरता है। इसी भावना के साथ सुनिए फिल्म प्रेम पुजारी का ये मधुर गीत।

0: आपके संदेश
1: संदेश से आते हैं
0: आपके गीत
2: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
0: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
3: और अब आइए सुनते हैं वार्ता सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय और साहित्यिक अवदान। वार्ताकार हैं डॉक्टर बिंध्यमणि त्रिपाठी।
4: भारतीय हिंदी काव्य धारा में जब हम छायावाद की बात करते हैं तो बरबस ही प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का स्मरण हो आता है। छायावादी कविता की चतुष्टयी में यद्यपि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा भी हैं, इन सभी कवियों ने प्रकृति पर विपुल कविताएं लिखी हैं, किंतु प्रकृति का सुकुमार कवि पंत जी को ही कहा गया। सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने लेखन से हिंदी साहित्य को अनेक रूपों में प्रभावित किया और बहुलशः समृद्ध किया। पंत जी का जन्म 20 मई को उत्तर प्रदेश के बागेश्वर जिले के कौसानी गांव में हुआ था। यह गांव अब उत्तराखंड में पड़ता है। यह 1900 की बात है। बचपन में उनका नाम गोसाई दत्त था। हाई स्कूल में इन्होंने अपना नाम बदल करके स्वयं सुमित्रा नंदन पंत कर लिया, जो आगे चलकर हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुआ। पंत जी में नवीनता के प्रति गहन आकर्षण था। यही कारण है कि प्राचीन काल से चली आ रही ब्रजभाषा और द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता से अपने को अलग रखा। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसके प्रति उनमें कोई अनुराग नहीं जगा। पंत जी प्रकृति के कवि हैं, उसकी संवेदना के कवि हैं। कोमल कांत कविता जैसे वे लिखते थे वैसे थे भी सुंदर और बहुत ही सुकुमार। पंत जी की कविताओं को देखने पर उनकी कल्पना शक्ति पर सबसे ज्यादा दृष्टि जाती है। नवीन दृष्टि का आवाहन करती उनकी कल्पना सर्वथा अपराजित, अजेय, अलौकिक एवं अद्भुत है। छायावादी कवियों में जैसा प्रकृति वर्णन पंत जी ने किया वैसा बृहद रूप किसी अन्य कवि में नहीं दिखता। 2 दर्जन से अधिक काव्य कृतियों के रचनाकार पंत जी की कविताओं में प्रकृति का साहचर्य वर्णन समुच्चय के रूप में दिखता है। 1926 में उनके प्रकाशित काव्य संग्रह पल्लव को छायावादी कविता का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। पल्लव की भूमिका को हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण आख्यान माना गया है। पंत जी की अन्य कृतियों में वाणी, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा और सत्यकाम हैं। आधुनिक संदर्भ में जिस परिवर्तन कविता की चर्चा होती है वह

इसी पल्लव कविता संग्रह से ली गई है। भाव, विचार, रचना कौशल आदि सभी दृष्टियों से आलोचकों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। परिवर्तन कविता का अनुभूति पक्ष जितना प्रौढ़, प्रखर एवं प्रगल्भ है, उतनी ही इसकी अभिव्यक्ति भी प्रकृष्ट, प्रांजल एवं प्रवेगपूर्ण है। परिवर्तन कविता में कवि ने परिवर्तन की चिरंतन गाथा का निरूपण करके विश्व की परिवर्तनशीलता का एक जीता जागता चित्र अंकित किया है। अहे महाअंबुधि, अहे महाअंबुधि, लहरों से शतलोक चराचर क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर, तुंग तरंगों से शत युग शत शत कल्पांतर उगल महोदर में विलीन करते तुम सत्वर, शत सहस्र रवि शशि असंख्य ग्रह उपग्रह उडुगण जलते बुझते हैं स्फुल्लिंग से तुम में तक्षण। पंत जी का प्रकृत प्रेम राष्ट्र प्रेम का ही सूचक है। जिसे अपने देश से प्रेम होगा उसे उसकी आबोहवा धरती पर्यावरण से प्रेम होगा ही। पल्लव कविता संग्रह में जो कविताएं आती हैं उनका विकास हम गुंजन कविता संग्रह में देख सकते हैं। कविता क्रम में पंत जी की कविताएं सबसे पहले उनके जन्म स्थान के कारण छायावादी वैचारिकता से मेल खाती हैं। आगे चलकर गांधी जी का उनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा। यहाँ कविता की दूसरी दिशा दिखती है। तीसरे हिस्से में योगी अरविंद से प्रभावित होने के कारण कविता का स्वर आध्यात्म दर्शन की ओर मुड़ जाता है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल जैसी रचनाएं इसी परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थीं। सामाजिक सरोकार के मूल्यों से प्रभावित होकर तमाम कविताएं प्रगतिवादी वैचारिकता के घेरे में भी लिखी गईं। इस प्रकार पंत जी की कविता के हम तीन चरण देखते हैं। आंतरिक विकास के लिए वे गांधीवाद से प्रभावित होते हैं। ग्राम्या जैसा काव्य संग्रह सामाजिक संदर्भों के निहितार्थ ही लिखा गया। यहाँ ग्राम जीवन का मार्मिक चित्रण है, किसान जीवन का यथार्थ निरूपण है। ये मानव नहीं शापित जीव हैं, ये मानव नहीं शापित जीव हैं, जो चेतना विहीन एवं आत्मविस्मृत हैं। अधिकांश जनता का रद्दी की टोकरी सा जीवन है, संज्ञाहीन, अर्थहीन, बेकार, चिर फटे टुकड़ों सा पड़ा है। कविता के संदर्भ में पंत जी रविन्द्रनाथ टैगोर से भी बहुत प्रभावित रहे। पल्लव के बाद 1926 में जब वीणा कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ तो उसमें गीतांजल का स्पष्ट प्रभाव देखा गया। यद्यपि वीणा काव्य संग्रह की कविताओं को खुद पंत जी ने ही दुधमुहा प्रयास कहा है, तथापि इन गीतों में रहस्य और जिज्ञासा का पूरा वितान देखने को मिलता है। रहस्य उनकी कविताओं का एक महत्वपूर्ण गुण है। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। पंत जी की कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य चेतना के प्रति अदम्य उल्लास है। यहाँ मानवीकरण तो है ही, कवि तमाम उद्दीपनों से शक्ति बार बार ग्रहण करता है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। पंत जी की कविता में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रभाव और ज्ञायता का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। कोमल कांत पदावली तो अनिवार्य है हर कविता के साथ। जैसे वो कोमल थे वैसी ही उनकी कोमल रचना धर्मिता भी थी। युवांत कविता संग्रह के प्रकाशन से पंत जी के काव्य जीवन का नया दौर प्रारंभ होता है। यहाँ कवि पंत जी कल्पना और स्वप्न के दायरे से बाहर आकर सामाजिक आर्थिक समस्याओं से टकरा कर जनता के बीच पहुँचते हैं। यह सामाजिकरण ही कविता में प्रगतिवाद का प्रभाव दिखाता है। मनुष्यता की स्थापना और मनुष्य को सबसे सुंदर कहने का हुनर पंत जी के ही पास है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। पंत जी की कविताओं में प्रेम का स्वरूप उदात्त रूप में चित्रित हुआ है। प्रेम को पवित्र मानने और उसे उत्तरोत्तर परिपक्व होने की प्रक्रिया उनके आध्यात्मिक चिंतन का पर्याय है। वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप हृदय में बनता प्रणय अपार,
लोचनों में लावण्य अनूप

0: लोक सेवा में शिव अविकार। पंत जी सौंदर्य को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते थे। इसका विभिन्न रूपों में अपने कविताओं में उन्होंने व्यक्त भी किया है। यह सौंदर्य ही पाठक को सहृदयता एवं संवेदना से जोड़ते हैं। 1938 में पंत जी ने रूपाव नामक पत्रिका निकाला। स्वच्छतावादी विचार से प्रेरित इस पत्रिका का उस काल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। पंत जी छायावादी कविता की दायरे से बाहर प्रगतिशील थे। छोटे रूप में वे तत्कालीन समय में मार्क्स और फ्राइड से भी प्रभावित रहे। युगांत और ग्राम्य काव्य संग्रह पंत जी की प्रगतिशीलता के स्वर को नई पहचान देते हैं। पंत जी मानवतावादी रचनाकार थे। मानव मूल्यों को पक्षधरता, प्रकृति से लेकर समाज मनुष्य तक उनकी कविताओं में सर्वत्र बिखरा पड़ा है। आज हम सब पर्यावरण के मुद्दे पे कितना परेशान हैं, जूझ रहे हैं, नई नई परेशानियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। ऐसे में हम पंत जी के उस प्रकृति प्रेम को आत्मसात करें तो पर्यावरण का संरक्षण करें तो निश्चित ही प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। पंत जी की रचनात्मकता में मुख्यतः प्रकृति के अलावा कुछ नहीं, वह प्रकृति को, समाज, राष्ट्र को प्रभावित करती है। आकाशवाणी केंद्र पर पंत जी ने लगभग 5 वर्षों तक मुख्य निर्माता के पद पर भी कार्य किया था। पंत जी की महान साहित्यिक उपलब्धियों में ज्ञानपीठ पुरस्कार रहा। कला और बूढ़ा चांद पुस्तक पर उन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1968 में चिदंबरा पर उन्हें प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार था, यानी इसी वर्ष यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। कवि सुमित्रानंद पंत की संपूर्ण उपलब्धि हमें लोकायतन में देखने को मिलती है। इस महाकाव्य का प्रभाव तत्व गांधी और अरविंद दर्शन से जुड़ा हुआ है। मुख्य विषय सामूहिक मुक्ति है। साहित्य की भाषा में कहें तो सबका हित, पर यह दर्शन का परिप्रेक्ष्य है। कवि मानता है कि वैयक्तिक मुक्ति के बरक्स सामूहिक मुक्ति अति उत्तम है। पूरा महाकाव्य लोकायतन गांधी जी से प्रभावित होकर अरविंद के सामाजिक चिंतन पर समाप्त हो जाता है। यहाँ भी कामायनी महाकाव्य की तरह इस महाकाव्य की पात्र संयुक्ता हिमालय की सुंदरता को देखकर विस्मय और चकित हो जाती है। संसार में यहीं से प्रकाश फैलता है। वस्तुतः प्रगतिशील होने के बावजूद पंत जी छायावादी संस्कारों की जगड़न से कभी मुक्त नहीं हो सके। उन्होंने हिंदी साहित्य में सौंदर्य, कोमलता, कमनीयता और दृश्यों का अद्भुत संयोजन अपनी कविता में किया। ग्राम्य जैसी कृति में वे पूर्णतः मुक्त होते हैं। कविताओं में बिंबों की अद्भुत छटा, गीतों की स्वर लहरी ने छायावादी कविता के नए प्रतिमान दिए। भारत सरकार ने उनके साहित्यिक अवदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया था। आज पंत जी हमारे बीच नहीं हैं। पंत जी का प्रकृति के प्रति निष्ठा उनकी रचनाओं को आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा और प्रशस्ति प्रदान करती रहेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय और साहित्यिक अवदान। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए हम डॉक्टर बिंदमणि त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी कविताओं में पर्वतों, वादियों और प्रकृति की सुंदरता को जीवंत कर दिया था। उनकी काव्य भावना से मेल खाता हुआ फिल्म मधुमती का ये सदाबहार गीत आप भी सुनिए।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।

समाधान कार्यक्रम में आइए अब देखते हैं समाचार पत्रों में। वकील की वेशभूषा में अदालतों पर जाकर काम करने वाले लोगों को मंगलवार की सुबह से ही चिन्हित किया जा रहा है। अध्यक्ष कालका प्रसाद मिश्रा के निर्देशन पर वकील की पोशाक में अदालत की ओर जाने व वापस आने वाले लोगों के परिचय पत्र की जांच की गई। इस दौरान महिलाओं समेत 18 ऐसे लोग मिले जिनके पास कोई परिचय पत्र नहीं मिला। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह LLB की पढ़ाई कर रहे हैं। अध्यक्ष ने उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात महिला कमांडो अब केवल सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहेंगे बल्कि रामनगरी में होने जा रहे एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की विशेष साक्षी भी बनेंगी। 29 मई को राम मंदिर परिसर स्थित मां भगवती मंदिर के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण समारोह में 3500 से अधिक मातृशक्तियों के साथ महिला कमांडो भी शामिल होंगी। महिला शक्ति को समर्पित इस आयोजन को राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के योगदान के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को किसान दिवस का आयोजन किया गया। बैठक में बिजली विभाग से संबंधित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 25 और 30 मई को दो रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों के माध्यम से 500 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी का अवसर मिलेगा। पहला मेला 25 मई को सेवा आयोजन कार्यालय परिसर में लगेगा जिसमें करीब 100 पदों पर भर्ती होगी। दूसरा मेला 30 मई को ITI बेनीगंज में आयोजित होगा जहां चार प्रमुख कंपनियां लगभग 400 पदों पर युवाओं का चयन करेंगी। इन मेलों में हाईस्कूल इंटरमीडिएट ITI डिप्लोमा और स्नातक पास अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। कंपनियों के प्रतिनिधि मौके पर ही इंटरव्यू लेकर चयन प्रक्रिया पूरी करेंगे। भर्ती तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों प्रकार के पदों के लिए की जाएगी। जिला सेवायोजन अधिकारी शैलेन्द्र शुक्ला ने बताया कि 25 और 30 मई को 500 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। रोजगार मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, हाईस्कूल और इंटर की मार्कशीट, ITI या डिप्लोमा प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी साथ लेकर आए। और इसी के साथ अब हमारे कार्यक्रम का समय संपन्न होता है। प्रणाम। अयोध्या सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्ते।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 9161877347।
3: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपकी गीत।

दोस्तों हमारे पास संदेश आया है ग्राम बेहरामपुर टेहमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। डॉक्टर तिलक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा और सचिन का। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म तेरे नाम का गीत। आवाज है अलका याग्निक की, गीत को लिखा है समीर ने और धुन बनाई है हिमेश ने।

अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास संदेश भेजा है ऊपर कोट मोहल्ला बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगाहत परवीन शहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी और फरदीन अब्बासी ने आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सड़क का गीत आवाज है अनुराधा पौडवाल की गीत को लिखा है मनहर ने और धुन बनाई है समीर ने

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर
2: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
2: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
3: अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सुनिए समीर का लिखा हुआ गीत। धुन बनाई है नदीम श्रवण ने और फिल्म का नाम है प्यार प्यार। इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास संदेश भेजा है हरगोविंद नागर नवाब शहर से सुरेंद्र सिंधु, अनीता सिंधु, रोहित सिंधु, रितेश सिंधु, प्रतीक्षा सिंधु और शिखा सिंधु ने।

अगले गीत सुनिए फिल्म अंदाज का, आवाज है मोहम्मद रफी की और आशा भोसले की। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। इस प्यारे से गीत को सुनने के लिए हमारे पास संदेश भेजा है आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार और नंदिनी जंगेल ने। आप सभी सुनिए अपने रेडियो सेट पर अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: Hello.
1: Hello. Suno. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090।
4: लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
5: आपके संदेश, आपके गीत का अंतिम नगमा मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, श्रोताओं माफ़ करिएगा, मुकेश की आवाज़ में मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत सुनिए। धुन बनाई है नौशाद ने और फिल्म का नाम है साथी। सुनना चाहते हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा और रमेश चंद्र वर्मा।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत यहीं संपन्न होता है।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका? गुड्डी की फीस का।
1: दिखा।
2: 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, जहां आपके दिल की पसंद बनती है हमारी अगली प्रस्तुति। तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए संगीत के इस खूबसूरत सफर में। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले श्रोता से। हेलो हेलो, आपकी आवाज मिल नहीं रही है, अगले श्रोता का हम इंतजार करते हैं। तब तक आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
3: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
2: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
3: और साथ में अपना नाम, पता
2: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
3: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
4: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को

0: दिन में 1:30 से 2 के बीच।
1: हेलो
2: हेलो
1: हाँ सर, अपना नाम बता दीजिए।
2: मेरा नाम शिवपाल सिंह है।
1: शिवपाल जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: नवाबगंज गोंडा।
1: अच्छा, हमारा कार्यक्रम आप रोज सुनते हैं?
2: जी मैम।
1: ठीक है, कौन से

0: ते हैं आपकी पसंद का गीत। आपको और कुछ बात करनी है हमसे आकाशवाणी अयोध्या से?
1: जी मैम नहीं, थैंक यू।
0: ठीक है, आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पसंद का गीत सुनिए अपने रेडियो सेट पर।
1: थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम, जहां आपकी दिल की पसंद बनती है हमारी अगली प्रस्तुति। डायल कीजिए हमारा नंबर 7376804090। हमारे अगले श्रोता लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो
1: जी। हेलो
0: सर, अपना नाम बता दीजिए।
1: सर मेरा नाम है मोहम्मद राजिद, मैं जिला अयोध्या बड़ा सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। किस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का भी नाम है, एक गाने बोल भी
0: है। अच्छा ठीक है, तो हम आपको सुना

0: अगर आपकी भी कोई फरमाइश है, कोई याद है, या किसी अपने के लिए कोई खास गीत सुनना चाहते हैं तो तुरंत मिलाइए हमारा नंबर 7376804090, क्योंकि यहाँ पर आपकी आवाज़ की अपनी अहमियत है। हेलो
1: हेलो मैम, क्या हाल है? नमस्कार,
0: गुड मॉर्निंग। नाम बता दीजिए।
1: मैं रिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर से, दीवानों के शहर, जिला रायबरेली से। मैम कैसी हैं आप?
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ। रायबरेली से आप बात कर रही हैं? बहुत दूर से हमें आपने फोन किया है।
1: जी मैम बिल्कुल।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैम कुछ नहीं, घर पे रहते हैं, घर के काम करते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप रेडियो सुनती हैं, इसका मतलब आप देश की एक बहुत जागरूक नागरिक हैं और अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी। अब पहले बता दीजिए आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम मूवी है स्ट्रेंथ मैन और गीत के बोल है आज मिले हो कल फिर मिलना।
0: चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, रेडियो के माध्यम से आप इसे सुन पाएंगी तो हम आपको सुन।
1: स्पेशली मैम आपको डेडिकेट करते हैं और पूनम दीदी कानपुर से, गुंजन तिवारी, बाकी जितने सारे

0: श्रोता सुन रहे हैं सभी के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमें फोन करने के लिए। तो आप सुनिए
0: मैम, और मैम मेरी बहन पिंकी है, और मैम नमस्ते बाय बाय।
1: नमस्ते नमस्ते बाय बाय, फिर फोन करिएगा। थैंक यू,
0: ठीक है मैम, बाय
1: बाय।

0: आज तो पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हेलो।
4: हेलो, नमस्ते मैम।
3: नमस्ते सर, कैसे हैं आप?
4: मजे में, आज से सुरक्षित है। मैं गीता राम गोर से डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र। आपने आदित्य का कार्यक्रम शानदार, बार बार दर्जेदार, गुंडा कार्यक्रम होते हैं, मुझे बहुत पसंद है मैम।
3: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत दूर से हमें कॉल किया है, अलग राज्य से फोन किया है। आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं?
4: जी मैम, जी मैम।
3: अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
4: आज के आयुर्वेद प्रोग्राम में सुनना हीना, मैं हूँ खुश रंग हीना, ये गाना सुनना चाहता हूँ मैम।
3: आपको बिल्कुल सुनाया जाएगा आपकी पसंद का गीत। आप अपने रेडियो सेट पर सुनिए लता मंगेशकर का गाया हुआ ये खूबसूरत सा गीत। आप फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों, जिंदगी चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, कुछ पल संगीत के लिए अवश्य निकालिए, क्योंकि संगीत थके हुए मन की सबसे अच्छी और सबसे असरदार दवा है। हमारे लाइन पर जुड़ चुके हैं एक और श्रोता। हेलो।
1: हेलो मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते सर, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हम हरिपुर से बोल रहे
0: हैं। हरिपुर से बात कर रहे हैं सर। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज इस कार्यक्रम में?
1: जी,
0: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: स्वर्ग से सुंदर का।
0: ठीक है, तो आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं? हेलो अयोध्या के जितने भी प्रोग्राम हैं और हेलो अयोध्या जो कार्यक्रम है उसमें आप फोन मिलाते रहते हैं। चलिए ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। सुनिए अपनी रेडियो सेट पर।
1: नमस्ते,
0: नमस्ते।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा कार्यक्रम हेलो अयोध्या अब यहीं संपन्न होता है। हम अपने पसंद का गीत सुनने के लिए हमारा नंबर डायल करिएगा अगले कार्यक्रम में 7376804090।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या।

101.9 MHz पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: संग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम

0: चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की
1: जी।
0: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी, श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
1: जी
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
1: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
1: जी
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
1: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
1: दूसरा है गोल्डन मंकी। बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
1: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
1: जी
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
1: जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है। इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
1: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
5: I am fine ma'am.
6: How are you ma'am?
3: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
5: Ma'am.
3: All right. You all know that pets are

0: IN. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम दिक्रो और अब सुनते हैं कार्यक्रम एक पौधा राजू का।
1: इस कार्यक्रम में एक बच्चे के बारे में मनोरंजक ढंग से बताया गया है कि कैसे उसने एक पौधा लगाया, उसकी देखभाल की और अपने मित्रों को भी उसने पौधा लगाने के लिए किस प्रकार प्रेरणा दी।

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: राजू स्कूल से आ गए तुम।
0: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
0: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
0: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
0: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
0: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: सुधा जी बेटा, तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा, उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा, पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ, अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी, अभी खोदता हूँ। नई खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी। वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
0: देखा बेटा, ये

0: ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
1: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: लो मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा,
1: चलो बेटा।
2: जी दे।
0: चलिए दादाजी।

0: हाँ बोलो जी।
1: राजू कहाँ चला गया?
0: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
0: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
1: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
0: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूँ?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं?
4: दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
1: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
4: हाँ दीदी, मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

हीट वेव की स्थिति शरीर की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रचार माध्यमों से हीट वेव लू के संबंध में जारी की गई चेतावनी पर ध्यान दें और हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगना जैसे लक्षण होते हैं उसमें जैसे कमजोरी है, चक्कर आना है, सिर दर्द, उबकाई, घबराहट, धड़कन और सांसों में तेजी, मूर्छा आदि को पहचानें। यदि उपरोक्त किसी भी लक्षण एवं हीट रैश यानी घमौरियाँ और हीट क्रैम्प मांसपेशियों में ऐठन का अनुभव करते हैं तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। हाइड्रेट रहें, शरीर में जल की कमी ना होने दें, अधिक से अधिक पानी पिए। यदि प्यास ना लगी हो तब भी पानी पिए। घर से बाहर जाते समय पीने का पानी साथ लेकर जाएं। ORS घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे कि शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके। जल की अधिक मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियों जैसे तरबूज, खरबूज, संतरे, अंगूर, अनानास, खीरा, ककड़ी, सलाद पत्ता इत्यादि का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: ये करेंगे वो करेंगे. मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया. मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला.
1: पछतावा तो नहीं होता?
0: बिल्कुल नहीं. बिल्कुल
1: तो,
0: नहीं.
1: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए क्या बनना चाहेंगे?
0: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी.
1: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
0: जी,
1: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
0: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती. जरूर मैं, मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है. मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई. फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई. मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं. पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद्दपार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं. और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है. और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध.
1: तो कैसा काम चल रहा है?
0: अच्छा चल रहा है. अब भी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है.
1: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग. इस फील्ड में मजा आ रहा है?
0: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारू, जिन्होंने डॉन बनाई थी. और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं. अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है. कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे. और इसकी भी एक मजेदार कहानी है. जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है. और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके. तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे. और ये गाना भी लोगों ने बहुत

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी,
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी
0: हैं। और फिल्मों में की संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो आप, नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कोशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो
1: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के ये मायने मेरी चार गाने किए और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज अहमद फैज की रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: बैरोड जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित रही?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीजें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसे ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गजलों को ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गजलें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गजल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किल थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: सुमन भैरव जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे ये हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: के आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए। और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं, उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 miles लॉन्ग आइलैंड है, और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था। लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया, बाकायदा चीजें मैंने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूध का काम बरसों से कर रही हैं। तो
1: बड़ी अच्छी बात कही आपने,
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को
1: कोशिश कर रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुकी होंगी, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है। और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुंच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का। और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाहूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपकी जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी कहते ना हमारी एक्टिविटीज रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
0: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
1: जी,
0: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
1: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत

0: बना लेती हूँ मैं, समझे ना. तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना, क्रिएशन का शौक है. बस स्टेज पे करूँ मैं, या स्मॉल स्क्रीन पे करूँ, या खुद गाऊँ. अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूँ कि जहाँ मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले.
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का,
0: जी
1: वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी, मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ. और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी, बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना. हमारी वहाँ का जो हमारा समुंदर है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो. इतनी खूबसूरत जगह है.
1: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए.
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने. पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूंगी कि मेरा पहला एलपी म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो एलपी का नाम था झनकार. उसमें 8 रचनाएं थी. और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था, आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था. उसकी एक रचना आप सुनाइए. और बोल है, निगाहें नीची किए,

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं।
1: जी।
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दारुस्सलाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली, और वो भी एक किस्म का प्राइज था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलूड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 consecutive years बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है,
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए। जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे, वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था। और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बरोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

0: सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।
1: सेल्युलॉइड के सितारे।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: लगे जब फूल रखने तो कब्र से आवाज ये आई, चढ़ाना फूल जाने मन मगर आहिस्ता।
1: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में लाइव। ये नायाब रिकॉर्डिंग और इससे आगाज रंग तरंग का

पेश कर रहा हूं जनाब, अमीर मिनाई की गजल है, वो बेदर्दी से सर काटें अमीर, वो बेदर्दी से सर काटें अमीर, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मकते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायर ने, जहां तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फर्क है जो पंजाब में और लखनऊ में फर्क है।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको। मैं हूं तेरा तू नसीब अपना बना ले मुझको।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए

0: 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में शबाब फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायनी है गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

बताओ। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में गंवार फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में राज हट। इस फिल्म का गाना हजरत जयपुरी है गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे अजीज कश्मीरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें थी आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम तुम सा नहीं देखा।

अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है अवधी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।

मुखिया तो हमरो बलम बोए दस एकड़ उखिया। अब हमार सजनी हे हमार सजनी गौवा के मुख

लोकरंग कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है वो कार्यक्रम फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कुछ तुमने कहा। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो दोस्त अफजाला का प्यार भरा नमस्कार।

कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। घर फिल्म का नगमा है, गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन साहब ने। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर घर फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं कुछ और भी श्रोता हैं जो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, जिन्होंने फेसबुक पेज पर पोस्ट भेजी है अपनी। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भागवत और अवधेश यादव की पोस्ट है मिल्कीपुर अयोध्या से। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से लिखा है शेख जियाउर रहमान ने। जनकपुरी सहारनपुर से जोन टीक्रिस्टो रोजी। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी। उड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से पोस्ट किया है रमेश चंद्र चौहान ने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा हैं। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लिखा है मुकेश गोस्वामी ने। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक। सैयद मसरूर शाइना हसन ने पोस्ट किया है गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम हैं। चरौदा बार नवापारा से जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हैं नंद कुमार ठाकुर। पंचकूला चंडीगढ़ से हैं राहुल रचित खुराना। पंचकूला चंडीगढ़ से राहुल रचित खुराना ने पोस्ट की है तुलसी दास चौक मस्कीन ने। रावर करनाल से हैं ज्ञान भूषण शर्मा और मध्य प्रदेश से लिखा है भेड़ाघाट रोड जबलपुर अशोक सिंह ने। और गांव फरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डोडी। जमानिया जिला गाजीपुर से है सुरेश जायसवाल। और अनारकली बाजार जगराओ से सुनील पाठक हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

लता मंगेशकर सुरेश वाडेकर की आवाज़ में प्रेम रोग फिल्म का ये गाना। गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश लिखने वाले जो हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा था कि प्रेम रोगी फिल्म का गाना सुनाइए, तो प्रेम रोगी फिल्म का गाना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन

प्रेम रोग फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। पसंद करने वाले हमारे जो श्रोता हैं वो हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी। तो आइए सुनते हैं गोस्वामी जी की पसंद पर।

दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी है और कस्बा सेंथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं चंदूलाल पटवा और मुजफ्फरपुर बिहार से हैं राजू कुमार, इंदु पार्वती हिमांशु हैं गांव हीरा वाली फाजिलका पंजाब से, संबलपुर कांकेर से फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है फागुराम यादव ने और उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह हैं, बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर हैं, बाला साहब करवा से हैं नंदकिशोर घटे और एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा,

नगर दरियापुर बाबली से हैं गजानन येले। सदर बाजार।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है। किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।

0: जी हाँ, यही तो है हम सब का आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही

0: हमारी आवाज हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।

आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फकीरा फिल्म से। गीत है रवींद्र जैन का और संगीत रवींद्र जैन का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं परभणी महाराष्ट्र से रूपेश

कुछ पसंद और भी श्रोताओं की है हमारे पास। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, और किशोर नगर अमरावती के हैं हीरामन शेंडे। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से हैं इरशाद अहमद। और दादा बाबू रोड गिरिरी झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अंजान। जिला उज्जैन बोरखेड़ा से हैं विनोद मूरत। और किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मण राव लोखंडे। और मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी। मालवा रेडियो श्रोता संघ हैं गुलबालोद तहसील आलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं विक्रम मालवीय। और गांव टोरवाल जिला नवांशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा। रियासत हुसैन सिद्दीकी हैं जसपुर उत्तराखंड से। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी। चंडीगढ़ से लिखा है सतीश अनेजा ने। और गंज डुंडवारा से हैं शमशुर कमर राही। गांव हाड़ी खेड़ा जिला सिरसा से हैं राधे श्याम शर्मा। मल्हार मचहा से राजकुमार पटेल। चनोरा जिला फिरोजाबाद से है बनवारी लाल कुशवाहा। और कमल बालूजा है मजनू का टिल्ला से। जिला मुरादाबाद से ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप है। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से शीतल कश्यप। ग्राम देगांव तहसील पूना महाराष्ट्र से हैं सदाशिव थोरात। और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर।

कुमार साहब। फिल्म का नाम है रोटी, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं रोटी फिल्म का ये गाना। और पसंद करने वाले हमारे जो श्रोता हैं वो उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल।

गणेश पूर्व कंजुंडवारा और एटा उत्तर प्रदेश से हैं। एम फारूक शेख गांव बांडीवाला फाजिलका से हैं। ओम बगड़िया मेरठ करंट से दिग्दर्शन और गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौड़। बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिवकुमार चौहान। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हैं पुखराज बड़गुजर। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी से नाना जी लाम से। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सावने। कमल साहनी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से हैं संदीप कुमार। जवाहर नगर उदयपुर से हैं बाबू भाई। सुरेश चौरसिया मोहल्ला साहबगंज चौराहा फरुखाबाद यूपी से हैं। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं दिलशाद हुसैन। कृष्णा पार दिल्ली से सुखिंदर सिंह जोड़ा। और नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा। ताज मंदिर लखड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पमार। गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक। वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस आर कुमार।

गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, गांव भटनी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से ईश्वरलाल मेहर सुमित्रा मेहर, सनावत से शेख मूसा मोहसिन और शनि बाजार कस्बा उघैती से प्रभाकर गुप्ता हैं, सागर लखनऊ जिला सिवनी मध्य प्रदेश से भागवत चौबे लाडला जी और गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बरासा,

0: भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
2: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
1: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
2: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
1: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
2: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
1: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
2: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
4: नहीं अछूता हो जिस
3: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
5: हेलो
6: सुनो, टेलीफोन नंबर,
7: माय नंबर इज
1: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090। आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

सुनिए कन्यादान फिल्म का ये गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह। तो लीजिए कन्यादान फिल्म का गाना सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

श्री काशी विश्वधाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह है, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दादार सिंह शेखावत और गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वडालकर,

राजधानी रायपुर से नीलू में एक नीलम है, शाहजी नगर देलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोकड़े और ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से हैं जयपाल यादव, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर हैं और हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज। ये संदेश भी देना चाहते हैं, सेफ वाटर सेव लाइफ इनका ये संदेश। रघुवीर नगर से दिलावर खान हैं और बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं नारायण लाल साहू, धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं रामचंद्र माखीजा, सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से हैं विनय मोहन खारवन और ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसामा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव। खानदान फिल्म का गाना सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत राजेंद्र कृष्ण का और संगीत रवि का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से सतीश शर्मा।

अंदाज फिल्म का गाना है, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा।

भाषानों और अलका याग्निक के गाए हुए इसी गीत के साथ ही समाप्त होता है कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता श्री जयंत।

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: कार्यक्रम का पहला गीत है अनुराधा पौडवाल और तलत अजीज के आवाज में।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
8: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
7: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
8: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
7: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044207070।
9: कार्यक्रम का अगला गीत

फाल्गुनी पाठक के गाए हुए इसी गीत के साथ ही समाप्त होता है कार्यक्रम गीतांजलि 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा, राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ

0: अर्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलुओं का उल्लेख किया। DRDO ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM बैंड 101.9 MHz पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। हमारी ग्रामीण बहनें सुने अपना कार्यक्रम मंगना।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
5: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
6: आरबीआई कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता जिनका वंदना सखी की वाणी से प्यार भरा नमस्कार। और हमारे सखी लोग कैसन है, उम्मीद है कि हमारे सगलो भैया बहनी लोग स्वस्थ और नीके भले से हुई हैं। सखी लोग, आज है दिन बुधवार और है तारीख 20 मई, और यह दिन पूरे विश्व में विश्व मधुमक्खी दिवस मनावा जाता है। सखियों, देखा जाए तो मधुमक्खी बहुत छोट जीव है, मुला हमार धरती और हमारे जीवन बचाव में एक बहुत बड़ा हाथ है। सखियों, अपन देश कृषि प्रधान देश है और हमारे कई भैया बहनी लोग खेती किसानी ही करते हैं, तो हमारे सभी का ये बात नीचे से जान लेवे के चाहिए कि अगर मधुमक्खी ना हुए तो हमारे फसलन में परागण ना हो पाई। जब मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर बैठत है तब खेत में सरसों, अरहर, फल और सब्जी नीचे मेरवा से होते है। जो मधुमक्खी ना रही तो हमारे अनाज और फल सब्जी के पैदावार भी ठप हो जाए। मधुमक्खी से हमारे सभी का शुद्ध शहद मिलत है जो उनकी दवाई के काम करत है। इनके छत्ता से मोम मिलत है, जैसे दिया, मोमबत्ती और दवाई भी बनत है। सखियों, अपने गांव गिराओं के भैया बहनी लोग मधुमक्खी पालन करके नीचे से पैसा कमाते थे और आत्मनिर्भर बनते थे। एक तरीके से ये हमारा आर्थिक धनोपार्जन भी ऐसे होता है। सखियों, इनका बचाव बहुत जरूरी है। इनके बचाव बदे हमें आजकल खेतन में जो रासायनिक और कीटनाशक दवाई डाली थे वो से हम ये खत्म हो जाती, उकरी जगह पर खेतन में नीम के तेल या जैविक खाद का प्रयोग करे के चाहिए, और साथ ही अपने घर में अपने आस पास फूल वाले पेड़ पौधे लगावे के चाहिए ताकि इनका भोजन मिल सके। सखियों, ये दिवस मनाने के उद्देश्य इनके प्रति लोगन में जागरूकता लाभ है और बताव है कि ये सिर्फ शहद नाए बनोती बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे थाली के भोजन भी बचावत थी। तो आवे आज के दिन हमें सभी का संकल्प ले चाहिए कि इनके रक्षा करब और अपनी धरती का हरी भरी रखब। बात का और आगे बढ़ाओ जाए मुला, वैसे पहले आज के फरमाइशी लोकगीतों के कार्यक्रम लोक सुरमाला में आपके फरमाइश का शामिल किए जाते हैं। पहली फरमाइश आई है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका गजबीये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीये। आपके फरमाइश है छोटी सी किशोरी लोकगीत सुने के। यही लोकगीत का फरमाइश आई है पद्मा टाकिस देपनगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सूरभ शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, यही लोकगीत के फरमाइश किए हैं। दयानंद कॉलेज भवानीपीठ सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु, मिस्कीन, रितिका, वानी, आरव, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता आरोही।

प्रियांशी सोनी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तन गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, टेम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, यही लोग गीत सुने के फरमाइश किए हैं। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का कार्यक्रम लिख रहे हैं। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का इसने अभिवादन करत है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी यही लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं। धारा रोड से नेहा भी यही लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं। ग्राम गुदनूपुर पोस्ट जगदीशपुर जिला बस्ती से अजीता रावत, जया रावत, आशीष रावत, अभय रावत, अकुल रावत व उनके मम्मी पापा, आप यह कार्यक्रम के प्रस्तुति आपका बहुत नीक लगा।

पापा, आप यह कार्यक्रम के प्रस्तुति आपका बहुत नीक लागत है और हम सब बहनन के आवाज आपका बहुत नीक लागत है, एक आप लिख के भेजे ही, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपन प्रतिक्रिया देखते हैं। तो हमें आप सबकी पसंद पे सुना जाए ई लोकगीत छोटी सी किशोरी।

मैं जरूर देत रही हूँ। सखियो, आज यानी कि 20 मई का हिंदी साहित्य के चमकदार सितारों में से एक सुमित्रा नंदन पंत जी के जयंती है आज, और कौसानी में जन्मे पंत जी का प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता रहा। वह प्रकृति की सुंदरता का इतना सजीव रूप से लिखे रहे कि उनकी कविता पढ़ते आंख के सामने पहाड़, झरना और हरियाली तैरे लागत रही। उनके प्रसिद्ध पंक्ति, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूलोचन। सखियो, पंत जी हिंदी के पहले ऐसे लेखक रहे जिनका साहित्य के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके महान कृति चिदंबरा के टाइम मिला रहा। इसके अलावा उनका पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया रहा। और सखियो, रेडियो पेमेंट के ताए तो ये जाना बहुत गर्व के बात है कि ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी नाम दे वाले पंत जी ही रहे। सखियो, पंत जी के रचनाएं ना हमें सिर्फ साहित्य से जोड़ती थी बल्कि पर्यावरण का प्यार करे और वह का बचाव के भी प्रेरणा देती। आज उनकी जयंती पे हम ये महान रचनाकार का कोटि कोटि नमन करते हैं। और सखियो, बात का और आगे बढ़ाओ जाए मुला तनी रुक के।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
4: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
5: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
4: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
5: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
6: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
5: सखियों, कार्यक्रम का आगे बढ़ा जाता है और लीन जाते हैं अपने कार्यक्रम में अगली फरमाइश। तो अगली फरमाइश आई है मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, कुमकुम सुरलकर, गोरखपुर से रणजीत सिंह, आप सब फरमाइश किए हैं कलकत्ता से आवेला झुमक भारी लोकगीत सुने के। और जिला मुरादाबाद दुल्हापुर से उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, आप जो है कोनो भी लोग के सुने के फरमाइश हैं तो आप सबकी पसंद पे अवे सुना जाए शारदा सिन्हा की आवाज में ये लोकगीत।

छे शारदा सिन्हा की आवाज में ईगो ने सगरो सखियन का नीक लाग हुई और सखियो देखो गर्मी के मौसम चलता है तापमान बढ़त जात है और ऐसे में लू से अपने आप का बचाव के ताई हम सब कुछ घरेलू सुझाव अपना सकी थे जिससे हमें सभी लू से बच सकी थे। तो सखियो सबसे पहले तो हम ई कहब कि पानी खूब पिए ना पिए एक मन का है तब वो थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पियत रहें। घर से बाहर निकले से पहले या आवे के बाद आम के पन्ना मट्ठा छाछ नींबू पानी या नारियल पानी या सत्तू के शरबत पिए इस शरीर का अंदर से ठंडा राखत है। और कोशिश करें कि हल्का भोजन करें ज़्यादा तेल मसाला वाला और भारी भोजन करे से बचें और बाहरी जंक फूड से भी बचें। तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी जैसे फल खाएं जेमा पानी अच्छी मात्रा में होते जो शरीर में पानी की मात्रा के बनाए रहते हैं। हमेशा ये गर्मी के मौसम में हल्के रंग के ढीले ढाले और सूती कपड़ा जरूर पहने। दोपहर में बहरे निकले का हो तो सिर और चेहरे का सूती कपड़ा से ढक लिए। छाता और धूप का चश्मा का उपयोग जरूर करें और घर से निकले समय खाली पेट तो बिल्कुल ना निकले चाहिए। कुछ न कुछ तो भाई जरूर खाए के निकलो, खाली पेट बिल्कुल ना निकले। और अगर जरूरी ना हो तो सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच धूप में ना निकले। और सखियो देखो लू लग जाते हैं तो ओके का लक्षण होते ओके बारे में अपने सखियन का हम बताए दिए। एमा बहुत तेज सिर दर्द होते है, चक्कर आओ होते है, तेज बुखार आओ होते है, मुला पसीना ना निकलत, मुंह सूखत है, बार बार प्यास लगत है, कमजोरी भी लगत है, उल्टी जी मचलाना, ये सब लू लगे के लक्षण है। तो ध्यान रखें अगर कोनो इस तरीके से दिक्कत होते तो तुरंत डॉक्टर का जरूर दिखावे। और ध्यान रखें अगर कोनो धूप से तुरंत क्यों घरे आवत है तो सीधे जो है वो एसी

माँ या कूलर माँ या पंखा माँ तुरंत न बैठे न ठंडे पानी के नीचे बैठे। तापमान जब सामान्य हो जाए तब पंखा कूलर में बैठे, ओके हवा खाएं और सेहत का ध्यान रखें और धूप में निकले से बचें। और सखियो एक साथ ही हम अब अपन अगली फरमाइश अपने कार्यक्रम में ली थे। अगली फरमाइश है ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा बदायूं से सोमेंद्र यादव पुष्पेंद्र यादव आपके फरमाइश है सासू पनिया कैसे लाऊं लोगे सुने के धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निशा सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया अयान बाबू आप कार्यक्रम के प्रस्तुति के प्रशंसा करते हैं और कोनो भी लोकगीत सुने के फरमाइश किए हैं तो आवे आपके पसंद पे सुना जाए प्रतिमा यादव की आवाज़ में ये लोकगीत।

बच्चों अगली फरमाइश आई है आरायन जिला श्रीगंगानगर से डॉक्टर बनवारी जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, आप अंगना से बोले नरेंदिया लोगे सुने के फरमाइश किए है। संबलपुर कांकेर से ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव, तेजस यादव भी यही लोगे सुना चाहते है। दतरंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पायस मणि वर्मा, पुष्पेन मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, दादा बाबू रोड गिरीडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नास, बेबी चाहत, आप सब भी यही लोग सुने के फरमाइश किए। गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकेश शर्मा, प्रमेर शर्मा, मुनी शर्मा, राहुल शर्मा, आप भी यही लोग सुने के फरमाइश किए हैं। तो आप सबके पसंद पे सुना जाए ये लोकगीत नूतन पांडे की आवाज़ में।

सखियों अगली फरमाइश आई है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मधु गोस्वामी मुकेश गोस्वामी आशी गोस्वामी सिवन्या गोस्वामी आप कौनों भी लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं पलेरा टीकमगढ़ से मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा आशीष विश्वकर्मा आप भी कौनों भी लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं साथ ही चीर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू अजय कुमार साहू जय किशन साहू श्रीमती कुमारी साहू श्रीमती इंद्राणी साहू माया साहू आप भी कौनों भी लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं अहमदगढ़ मंडी पंजाब का पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी रवीना आफिया जावेद अंसारी सूरज अख्तर रजिया सुल्ताना सूरज अंसारी आप भी कौनों भी लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं साथ ही मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेटी नाना जी लाम से मीना लाम से तेजस जय लाम से हर्षिता लाम से आप भी कौनों भी लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं तो आवे सुना जाए आपके पसंद पे लोकगीत शालिनी शर्मा और सखियों की आवाज में।

सखियों देखो बात बात कही तो बहुत कुछ कर रही है अपने सखियन के साथ जाए मन नहीं करा था लेकिन घड़ी इशारा करत है कि कार्यक्रम से विदा लेके भी समय हो गया है क्यों कहे से हर चीज समय पर ही निक लागत है तो यही वादा के साथ है कि अगले कार्यक्रम में नीक नीक गीत गाने और जानकारी के साथ फिर भेंट मुलाकात की जाए तब तक के तय वंदना का देन मती नमस्कार।

अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से प्रसारित केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक हूं, बहुत बहुत बढ़िया हूं।
0: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूं। क्या बात है।
1: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
0: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
1: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
0: अच्छा,
1: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या।
0: अरे वाह।
1: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है। जब चेहरे की चमक बता रही है
1: बिल्कुल,
0: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी है।
1: बिल्कुल।
0: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
1: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
0: अच्छा।
1: वहाँ जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में, कि गाड़ी करो, ये करो, तब जाओ वहां तक पहुंचो, आप एक मंदिर है जो वहाँ का प्रसिद्ध। तो लेकिन इस बार था रोपवे शुरू हो गया वहाँ पे।
0: अच्छा।
1: तो बस आप रोपवे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से, किसी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो।
0: अरे वाह।
1: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
0: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
1: बिल्कुल। और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर आप मथुरा जा रहे हैं आप, तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को तो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है।
0: वो अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ है, तीर्थ जगह है, स्थान है, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है, ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब, वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हूँ, तुमने खुद ही कहा, तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा।

0: और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी
1: तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है
0: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद, इतनी जगह घूम के आई हो,
1: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देख के बहुत अच्छा,
0: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है हमें, नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
1: हैं, तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है। मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते जो व्यंजन होते हैं ना वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहाँ बनेगी,
0: लेकिन फर्क होता है,
1: स्वाद बिल्कुल फर्क होता है,
0: क्योंकि पानी का बनाने वाले का तरीके तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना। तो यात्रा करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा मानती हूँ, और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है तो आप फील गुड महसूस कर रही हैं।
1: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
0: तो चलिए सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है
1: जी।
0: तो अब ये गीत सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हो आरती, आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो, देखिए आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियाँ।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: काटती बहुत बुरा है।
1: अरे काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा

0: हुआ है संस्कार.
1: अच्छा,
0: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा. ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी.
1: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
0: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना.
1: सद्भावना, अच्छा भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं. तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं.
0: जी बिल्कुल,
1: है ना.
0: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तंचोई साड़ी.
1: क्या बात है, क्या बात है. तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं.
0: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ.
1: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए है ना जी. और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं. देखिए सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है. बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना. हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं.
0: अपने विचार लिखें और जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
1: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया. ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं, आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं.
0: बिल्कुल. तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
1: व्यंजन. आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
0: जो मुझे बहुत पसंद है. आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की. दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत.
1: चलिए तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगे दाल पीठा, हमें खिलाएंगी भी. ठीक है. तो भाई हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं. एक मधुमक्खी उड़ती भी नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी.
0: अरे भगाओ भगाओ जल्दी.
1: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं और अनाज होगा कि नहीं, इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं.
0: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए.
1: बिल्कुल.
0: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की 1/3 खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग, जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पे ही निर्भर करता है.
1: बिल्कुल.
0: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे. मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं. एक पाउंड लगभग 1/2 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें. सच में 20 लाख
1: बताइए, तब जाके हमें शुद्ध जो शहद है वो मिलता है.
0: एक बूंद भी नहीं गिराना चाहिए.
1: बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए. और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं. जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने, पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती है और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती है.
0: जी, हमारे ये श्रोता जो है कितने ही कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है.
1: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने. और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है. और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं. फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा भी तुमने शुरू में बताया भी था
0: जी। और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता

0: पढ़ाने के लिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सके। अपने बगीचों की अगर हम बात करें उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीद कर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
0: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि

0: कर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का।
0: भाई नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल।
0: तो हम बात कर रहे थे आज की भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
1: अरे बहुत
0: है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ये साड़ियां और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सके।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा है।
1: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो नाम भाई थे। और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने

0: उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक है दो ताने और बाने में दो से पांच रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है, बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक
0: जी, इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में भी
1: मुश्किल है।
0: तो इसमें एक या दो ताने और दो से पांच बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियाँ बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती है और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या दो रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है
0: जी। और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
1: हाँ, बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है, तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
0: बिल्कुल, और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं, जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो है या विवाह समारोह के अवसर है या त्योहार है हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहां पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बताइए।
1: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का, तो हम सब शामिल करें।
0: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
1: गीत सुनते हैं।

0: इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है जो सबसे खूबसूरत है तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं हजारों भाषाएं एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना। देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ शोध हुआ उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम है वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्यप्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे हमारे आंसू निकलेंगे चाहे वो कोई अमेरिका में रहने वाला हो चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी

0: बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े
1: हैं। बहुत गहरी बातें आरती है, अगर हम इसे समझ पाए तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना।
0: बिल्कुल।
1: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
0: बिल्कुल, जो भाषा जानते थे उसमें समझते समझ आता है ना, तरीके से जिस भाषा को जानते हैं।
1: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना। हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
0: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने देखा होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हूँ, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
0: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
1: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती

0: परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है क्योंकि वहाँ आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे।
0: हाँ।
1: ये कभी मत लेकर
0: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए
1: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डिमेंशिया जो होता है मनोभ्रंश वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है ये मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए।
0: क्या बात है कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं मैं डबल एमए हूँ ट्रिपल एमए हूँ मैं पीएचडी हूँ है ना
1: जी।
0: मैं एमफिल हूँ ये अच्छी बात है। डिग्रियां लेते हैं आप पढ़ते हैं विद्वान बनते हैं बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं वो तो है ही जिंदगी का लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक। उनके लिए कहानी लिखना उपन्यास लिखना कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर आप खुद ही अपने आप को आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा मैं।
0: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है ना ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती
1: जी।
0: प्रकृति को आप भी देखती हैं मैं भी देखती हूँ लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती हैं
1: सबका नजरिया
0: मायने रखता है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल। वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से। जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां ब्रिज भाषा में
0: अच्छा लगा
1: बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं
0: तो अपने करीब पाते हैं ना आपको।
1: बिल्कुल।
0: ये हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है।
1: बिल्कुल जोड़ती है और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण बारीकियों और इतिहास उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
0: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
1: बिल्कुल
0: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना प्रेशर नहीं पालना
1: बिल्कुल
0: लेकिन शौक रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। अपने मन से सीखिए आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छे तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं नई नई चीजें
0: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है आपका व्याकरण सुधरता है आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
1: जी जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी भाषा
0: हम चौंक जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। देखने का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए इस भाषा को विकृत मत कीजिए है ना भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो ये गीत सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

घटा लाई का छुपा के।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उसपे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा छोटा भाई जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना कुछ
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना, आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो
1: उछल कर आप पर आएगा, आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम
0: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं, अगर आपने इनको छेड़ दिया
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही ततैया भी बहुत बुरा काटता है, ये रंग का होता है वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
0: बिल्कुल
1: है ना। तो चलिए भाषा पर बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है
0: जी। और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारी श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भी ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना
0: बहुत बड़ी भाषा है,
1: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
0: बिल्कुल
1: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है
0: जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे 2-3 और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए कितने कहना श्रोताओं के विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो जो उनके अंदर चीजें है ना वो विचार सामने आते हैं।
1: बिल्कुल देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार है जिंदगी में। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं और यह न केवल संवाद का साधन है।

0: बल्कि संस्कृति, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: बिल्कुल। और
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है। हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है। और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है। और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
1: भाषा भाषा है,
0: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
1: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
0: हाँ, चलिए, आपको भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है। हमें हर भाषा का,
1: भाषा कभी बुरी नहीं,
0: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए
1: जी।
0: एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं, और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था सद्भावना।
1: तो उसपे भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है, जिसमें कोई

0: द्वेष या स्वार्थ ना हो।
1: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है, तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, जिसमें कोई छल कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना, इसमें आता है।
0: बिल्कुल। और श्रोताएं जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार। मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
0: बिल्कुल। और श्रोताएं जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
0: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो
1: क्या
0: अर्थ है,
1: हाँ, वो हाँ, क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेम पूर्ण व्यवहार। और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसा कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका। ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
0: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं।
1: अब मूल्यवान तो ये गीत ही है
0: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल, और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में विशेषकर पौष के महीने में बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़, घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और 1/2 कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें, एक बर्तन में गुड़ और 1/2 कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए और फिर छलनी में से छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं, एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें, अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें, जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है, और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए, अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए और फिर आराम से निकाल के खाइए।
0: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है मुझे, तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है, मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे
1: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ पेज पे मिली
0: जाएगी, तो बनाने की मैं भी
1: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
0: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत,
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जी, वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
3: क्या बात है सर, बातें हो रही है जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहाँ एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहाँ ले गई?
2: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
3: जी
2: अल्मोड़ा हुआ।
3: अरे गजब, पहाड़ों पर
2: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
3: जी,
2: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
3: अच्छा।
2: तब तक शुरू नहीं हुआ था
3: जी।
2: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हम भी जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था, तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्ख था कि तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो एक अलग अनुभव था। तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी और कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, मतलब घूमने जाओ तो अलग बात है
3: जी,
2: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो, कभी रहा ना हो, तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था। लेकिन वो गुजरा और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
3: अच्छा,
2: 86 में।
3: क्या बात है, तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
2: और वो भी सब भी देखा हमने, वो पंत जी, अज्ञे जी वहां पे और रविशंकर जी का वहां पे वो था,
3: है ना?
2: यस। तो ये सब भी
3: उदय शंकर जी का,
2: तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब कि ये सब। लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
3: रहते कैसे,
2: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं, जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
3: पहाड़ों में।

0: बिल्कुल।
1: तो ये था
0: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई, बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे, क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर की, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
1: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी
0: जी,
1: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में टॉप हिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहां पे था, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है उसपे वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम।
0: बिल्कुल, और तब तो लंबी लाइनें हुआ करती थी,
1: लंबी लाइनें हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो टॉप हिल की थी वहां रहे, और फिर वहां से बस पकड़ना, फिर इधर आना टॉप हिल से किंग सर्कल आना वहां पैदल
0: जी,
1: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई।
0: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से ढाल लेता
1: तो
0: है,
1: फिर वो लोग अपने आप वो आपको उतार देते हैं
0: जी, जी।
1: तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ
0: जी,
1: उतार देंगे लोग
0: उतार देंगे
1: उतार
0: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
1: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी
0: चरम पर थी,
1: चरम पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी
0: जी,
1: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त पीछे बजाया करते थे लोग। तो इतने पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो।
0: बिल्कुल।
1: और वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
0: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूँ, कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
1: बहुत प्यार,
0: बल्कि हमने उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
1: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कुछ चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
0: जी,
1: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर
0: जी
1: तो खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
0: क्या बात है,
1: तो वो किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद जगजीत जी से बात हुई, तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ वो
0: बेडर रोड,
1: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था
0: जी।
1: तो मैं गया, और उस समय का वक्त था। तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है
0: जी।
1: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, रोज रियाज करना उनका काम था जब मुंबई में होते थे
0: जी।
1: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि बड़ा अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे
0: जी,
1: हाँ, वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी, तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
0: वाह वाह,
1: अक्सर होता है कि रख के जाओ, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, है ना
0: जी।
1: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
0: वो कौन सी गजल थी, घर से निकले थे?
1: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब,
0: ये जो जिंदगी की किताब है, वाह वाह वाह,
1: तो ये वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
0: और भूपी जी ने क्या गाया था?
1: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजल

0: बहुत है, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ,
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ हाँ,
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ाता हूँ न सुनाता हूँ, और वो गजल जो मैंने कभी आज तक छुई नहीं।
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती। तो वो गजल, लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
1: जी जी जी, ये जो जिंदगी की किताब है, ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई
1: जी,
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है,
1: वो
0: हाँ वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर जरूर।

0: जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: और ये बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होने जैसा तो हुई बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी जी,
1: और ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब।
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जो कमेंट्स है लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ ऐसे कमेंट्स है उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था।
1: पंकज जी उसके बाद,
0: जी
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ शख्स हरपल हादसा होने से, तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है, है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की।
0: नबील था,
1: हाँ
0: नबील,
1: नबील, नबील,
0: जी जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पे भी जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पे आता था गजल का, आरोही। तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में,
0: जी।
1: अच्छा उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे बाप रे,
1: नहीं था। तो उन्होंने गा दी गजल, तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें ये गजल कहीं मिली?
1: नहीं नहीं नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है।
0: अच्छा ओके,
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही में गया
1: था। तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई।

0: जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन नहीं था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरओई बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
1: आपके अपने दोस्त ने ये बात
0: ये मेरे उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में, वो हम बहुत अरसे से नहीं मिले थे।
1: जी जी।
0: तो ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना। तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया, तो हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था।
1: बिल्कुल बड़ा नाम है अजय कार्तिक जी।
0: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने मेरा ये कमेंट था
1: जी।
0: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहां पे उन्होंने कंसर्ट किया, वहां गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहां पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई। तो ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया।
1: हाँ बिल्कुल,
0: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया है, कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया हाँ, या सुर का इधर उधर, नहीं फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर। उन्होंने तीन बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए मजरू साहब, उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी है? तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था, तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह,
0: तो ये मजरू सुल्तान पर आशीर्वाद
1: शायर की बात है ना।
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर शायरी का ही रहा
0: जी,
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
0: जी।
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल बहुत ही मशहूर जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है
0: जी,
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
0: जी,
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना, बशीर बद्र, निदा साहब उसके संचालन कर रहे थे
0: जी,
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे,
1: अजीत एक्टर
0: जी,
1: और भी और कई तो फिल्म से काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर अलग ही हुआ करता था
0: जी,
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा तो बड़ा मुशायरा। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यू कह लीजिए,
0: अरे बाप,
1: तो शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पे बुलाया कि मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग है ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी, तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता, तो

0: मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा ये प्यार हुआ ना तो मुशायरा तो हो गया।
1: अरे अब तो शुरुआत कर रहे थे जब जी
0: मुशायरा तो हो गया।
1: अरे बाप रे बहुत बड़ी बात है।
0: तो ये बड़ी बात थी
1: जी।
0: तो ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना माला पहनाना
1: जी
0: तो ये तो हो गया मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया
1: गजब
0: अपने घर पर
1: जी
0: उनसे वहां से मिलना हुआ सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ ये गजल में सुन जो बता रहा हूँ जिसके बारे में
1: जी
0: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी।
1: हाँ हाँ
0: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई रिकॉर्ड भी किया उनका हाँ। आखिरी एल्बम था ये
1: ओहो हो
0: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे दुनिया में
1: जी, जी।
0: वो चले गए
1: जी।
0: वो एल्बम रिलीज हुआ चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे
1: जी।
0: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। क्योंकि इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
1: जी
0: और दूसरी आसमान से आगे
1: बिल्कुल।
0: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें हाँ तो मैं उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर पे तो उसमें कर देते हैं तुम उसको किताब लेके आ जाना फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा
1: जी जी जी।
0: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके चला गया तो मैं मिला वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडिशन में बैठो मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे सब ठीक है। तो मैं बैठ गया फिर उन्होंने वो गजल गाई दूसरी गजल जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं तेरे दामन में मेरे वास्ते या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद है तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और क्लैपिंग हुए सब कुछ हुआ फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन
0: खोला ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियां वालियां सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा
1: जी।
0: तो बोले नहीं राजेश रुक गए तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है देखिए स्टेज है पूरा
1: और पूरा हॉल
0: है म्यूजिक का पूरा सेटिंग गा रहे हैं वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए सेटिंग माइक दीजिए हाँ तो ये इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं कल्पना नहीं और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे मतलब
1: जो
0: पसंद थी गजल तो सारे तो वो गजल पढ़िए जाने कितनी उड़ान बाकी तो बात वही खत्म हुई। मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है इस परिंदे में जान बाकी
1: जी।
0: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: जी जी
0: आज तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: गजब गजब
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूँ और वो उसे गा रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ वो उसे गा रहे हैं
1: अद्भुत अद्भुत
0: ये अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: लगे
0: और आपको मालूम था कि ऐसा होगा वैसा होगा तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं मुझे तो ये था उनका प्यार ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है इसलिए मैंने बताया
1: क्या बात है ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ जाने कितनी उड़ान बाकी है जाने कितनी

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन।
1: बाबा
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन अब तो बस

क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में दो बार गुजारा है, और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए उसमें सरगम के सितारे उजाले

0: आपने शुरू किए उसमें सरगम के सितारे उजाले उनकी यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम थे, मुझे लगता है कुछ और भी गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है, सखी सहेली आपके दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से, मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं, मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था, और उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा, तो सबसे पहले यूनुस,
0: अरे राकेश जोशी,
1: उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे, एक तरह से
0: सब चीजों को संभालते
1: थे, तो एक अच्छी टीम थी जो हर तरह से जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ
0: जी,
1: मतलब हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया
0: बिल्कुल, और हर रोज आप एक नई चुनौती सामने
1: रखते हैं, कम होता है
0: जी,
1: तो मैं हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है,
0: खयाम साहब आ गए,
1: लक्ष्मी प्रांत कह रहे, प्यारलाल जी आए
0: जी,
1: आनंद जी आए
0: बिल्कुल,
1: है ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग,
0: रवि जी आए,
1: हाँ
0: बिल्कुल,
1: खयाम साहब
0: आए, और बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है,
1: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
0: मुझे याद है कि खयाम साहब नौशाद साहब आए हैं और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं और वहीं एक घंटे बात हो रही है
1: उनको, वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था
0: जी,
1: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का
0: बिल्कुल,
1: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे, कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के, फिर हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि एक घंटे में बांध लिया, दो घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम उनके ले सकते हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग कहाँ आएंगे अब इस दुनिया में, तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं,
0: किसी के पास नहीं है,
1: वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है
0: जी,
1: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, जब गानों पे बातें हो रही है या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही है
0: जी,
1: है ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
0: एक से बढ़कर
1: एक प्रोग्राम जो है वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर, पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया, तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं हो सका।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हो चाहे ट्रिब्यूट्स हो, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का, मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
1: क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
0: जी,
1: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए
0: जी जी,
1: तो ये भी हुआ है, और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में
0: बिल्कुल,
1: तो उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब, और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
0: जी,
1: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया
0: बिल्कुल। विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए, आपके दौर में और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी जी,
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया

0: हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो इस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं, है मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकांग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था
1: जी।
0: तो कोई संभावना नहीं थी इसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था
1: जी जी।
0: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनका ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है
1: जी।
0: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है।
1: ओके।
0: घर में तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन-लॉज, फादर इन-लॉज जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन-लॉज जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ, दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
1: अरे बाप रे।
0: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी। अब मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के जमाने से अपनी एक्टिविटीज की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था
1: जी,
0: तो वो सब
1: जी।
0: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए।
1: अरे वाह,
0: आर्य समाज की शादी में,
1: क्या बात है।
0: तो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई।
1: अरे
0: मैं अपने घर चला आया
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ कि हम, मैंने शादी कर ली है। और तो अब तो
1: कुछ हो नहीं सकता,
0: होंगे नहीं कि सबके, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए, फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे, तो मुझे यहाँ से ले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब, तो मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके।
1: गजब।
0: और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे, तो हाँ हाँ ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ कर, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना, हम ढंग से करते हैं, करेंगे उसको। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा है,
0: ये नहीं होने देंगे, मैं भी चलूंगी।
1: गजब।
0: मैं भी चलूंगी। तो फिर उन्हीं के साथ लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए, और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
1: जी जी जी,
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है
1: और ये है।
0: तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है, सारा साहस इनका है।
1: क्या बात है,
0: ये उस जमाने में
1: जी। शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है, और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, 2 एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ
1: जी। जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ, किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा क्यों नहीं होता।
1: वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी एक जिंदगी के
1: कितने
0: हिस्से हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और 2 छोटी छोटी बहर के शेर

0: क्या बात है। तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार। और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशिका। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के एक कार्यक्रम, जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532921909।
2: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का स्वागत है। युवाओं की सोच, सपनों और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त जीनत। साथियों, जरा सोचिए, अगर धरती से मधुमक्खियां गायब हो जाएं तो क्या होगा? अगर आप सिर्फ शहद के बारे में सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, खेतों से हरियाली फीकी पड़ जाएंगी।

फूलों की खुशबू कम हो जाएगी और हमारी थाली से कई फल और सब्जियां गायब हो जाएंगी। जी हाँ, मधुमक्खियां केवल शहद बनाने वाला छोटा सा जीव नहीं है, बल्कि प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मधुमक्खियां फूलों में परागण यानी पॉलिनेशन का काम करती हैं, जिससे पौधों और फल में बीज बनते हैं। दुनिया की लगभग एक तिहाई खाद्य फसलें मधुमक्खियों पर निर्भर करती हैं, यानी हमारी खेती, पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा में मधुमक्खियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इन्हीं के महत्व को समझाने और इनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ये दिन दोस्तों 20 मई को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन स्लोवेनिया के प्रसिद्ध मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ एंटोन जॉनसा का जन्म हुआ था। उन्होंने आधुनिक मधुमक्खी पालन को नई पहचान दी और लोगों को इसके महत्व के बारे में जागरूक किया। बाद में यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2017 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता दी। मित्रों, साल 2026 की थीम है बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। यानी ये जो थीम है वो हमें संदेश देती है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर मधुमक्खियां सुरक्षित रहेंगी तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बेहतर होगा। लेकिन आज प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग और पेड़ों की कटाई के कारण मधुमक्खियों की संख्या लगातार कम हो रही है। तो आइए साथियों, इस विश्व मधुमक्खी दिवस पर हम सभी प्रकृति की रक्षा करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लें, क्योंकि दोस्तों मधुमक्खियां केवल शहद नहीं बनाती बल्कि वे धरती पर जीवन और संतुलन को भी बनाए रखती हैं। तो चलिए मधुमक्खियों के शहद जैसा ही मीठा गाना अभी यहाँ हम सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म फैंटम से और इसमें आवाज है अख्तर चैनल और साथियों की।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये गीत अख्तर शनाल और साथियों की आवाज में, फिल्म का नाम था फैंटम। और अब आइए बढ़ते हैं सेगमेंट व्यक्ति विशेष की ओर। मित्रों, हिंदी साहित्य के विशाल आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी चमक समय के साथ और भी अधिक उज्जवल होती चली जाती है। एक ऐसा ही अमर नाम है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का। वे केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि प्रकृति की सुंदरता को शब्दों में ढालने वाले ऐसे कलाकार थे जिनकी कविताएं आज भी मन को शांति और आत्मा को संवेदनाओं से भर देती हैं। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के रमणीय स्थल कौसानी में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत का बचपन हिमालय की गोद में बीता। बर्फ से ढकी चोटियां, हरियाली, झरनों की कलकल और प्रकृति की निर्मल छटा ने उनके हृदय को इतनी गहराई से छुआ कि आगे चलकर वही प्रकृति उनकी कविताओं की आत्मा बन गई। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी और इलाहाबाद गए। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पंत जी ने पढ़ाई छोड़ दी और साहित्य की साधना में लग गए। धीरे धीरे वे हिंदी कविता के प्रमुख कवियों में गिने जाने लगे। पंत जी हिंदी साहित्य के छायावाद आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक थे। छायावाद में प्रकृति, कल्पना, प्रेम और भावनाओं को विशेष महत्व दिया जाता था। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद युग के चार प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। साथियों, पंत जी की कविताओं में प्रारंभ में प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण अधिक था, लेकिन बाद में उनकी रचनाओं में समाज, मानवता और आध्यात्मिकता और प्रगतिशील विचार भी दिखाई देने लगे। बात करें सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाओं की, तो पल्लव ये उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। इसमें प्रकृति और कोमल भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। इस संग्रह ने उन्हें हिंदी साहित्य में विशेष पहचान दिलाई। वहीं गुंजन नामक काव्य संग्रह में संगीतात्मक और भावनात्मक ये गहराई झलकती है। युगांत नामक रचना में सामाजिक परिवर्तन और नए युग की चेतना दिखाई देती है। ग्राम्या नामक काव्य संग्रह में ग्रामीण जीवन, किसानों की समस्याएं और भारतीय गांवों का सुंदर चित्र

0: चित्रण मिलता है। दोस्तों, चिदंबरा पंत जी की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इसमें जीवन, चेतना और दर्शन का गहरा चिंतन मिलता है। चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1968 में हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त दोस्तों, उन्हें वर्ष 1960 में उनकी कृति कला और बूढ़ा चांद के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं वर्ष 1961 में भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। साथियों, पंत जी की कविताओं में प्रकृति का केवल दृश्य नहीं बल्कि जीवंत अनुभूति बनकर सामने आती है। उनकी प्रसिद्ध कविता पर्वत प्रदेश में पावस की ये पंक्तियां सुनिए। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन पंक्तियों में प्रकृति के प्रति उनका अताह प्रेम और सौंदर्य बोध स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी भाषा इतनी मधुर और संगीतात्मक है कि उनकी कविताएं पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो शब्द स्वयं गुनगुना रहे हों। श्रोताओं, पंत जी ने केवल प्रकृति का ही नहीं बल्कि मानव मन की गहराइयों का भी सुंदर चित्रण किया है। उनकी एक और प्रसिद्ध कविता वियोगी होगा पहला कवि की पंक्तियां आज भी सुनने वालों के हृदय को छू जाती हैं। पंक्तियां कुछ इस तरह हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इन शब्दों में मानवीय संवेदनाओं का अथाह सागर समाया हुआ है। मित्रों, सुमित्रा नंदन पंत जी मानते थे कि कविता केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति है। उनकी रचनाएं हमें प्रकृति से प्रेम करना, संवेदनशील बनना और जीवन की सुंदरता को महसूस करना सिखाती हैं। 28 दिसंबर सन 1977 को वे इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनकी कविताएं आज भी हिंदी साहित्य के नभ में उज्जवल सितारों की तरह चमक रही हैं। श्रोता साथियों, प्रकृति की मधुरता, भावनाओं की गहराई और शब्दों की सुंदरता जब भी याद की जाएगी, सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। और दोस्तों, ये था सेगमेंट व्यक्ति विशेष। आइए यहां लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
4: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
3: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
4: आकाशवाणी अयोध्या FM जो

0: बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
0: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
0: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
2: अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों आप सभी का युववाणी कार्यक्रम में। और अब बारी है जानने की कि खेल जगत में हफ्ते भर क्या हलचल हुई सेगमेंट खेल संसार में। तो चलिए खेल संसार में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले 13 मई को खेले गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो मुकाबला हुआ जिसमें आरसीबी ने केकेआर को 6 विकेट से हराया। वहीं 14 मई को पंजाब किंग्स 11 और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला हुआ जिसमें पंजाब को हार का सामना करना पड़ा। वहीं 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। दूसरी ओर 17 मई को केकेआर और जीटी यानी गुजरात टाइटंस के बीच हुए मैच में केकेआर ने जीटी को 29 रनों से हराया। इसी दिन हुए दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। 19 मई को चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हुआ जहां चेन्नई को उनके घरेलू मैदान पर ईशान किशन की बेहतरीन 70 रन की पारी के साथ ही कप्तान पैट कमिंग्स की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद की टीम प्लेऑफ में पहुंच गई है। अब क्रिकेट से आगे बढ़कर बात करते हैं चेस यानी शतरंज की। जी हाँ, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा ने बुखारेस्ट रोमानिया में चल रही सुपर चेस क्लासिक के 5वें दौर में अमेरिका के वेल्सी सो के साथ अंक बांटे और टूर्नामेंट में 4थी बाजी ड्रॉ खेली। वहीं बैडमिंटन की बात करें तो दोस्तों मलेशिया में कुआलालंपुर में चल रहे मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 में बैडमिंटन के महिला एकल में भारत की अश्मिता चाहिला मुख्य ड्रॉ में पहुंच गई हैं। उन्होंने मंगलवार को चीनी ताइपे की पाई यू पो को 3 गेम के मुकाबले में हरा दिया। फिलहाल खेल संसार में इतना ही दोस्तों, और अब आइए यहाँ सुनते हैं ये गीत अरिजीत सिंह अंकित तिवारी की आवाज़ में फिल्म एयरलिफ्ट से

और दोस्तों अब बात करते हैं हीट वेव की। दोस्तों गर्मी का मौसम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बेजुबान जीवों के लिए भी बेहद कठिन होता है। हीट वेव के दौरान पक्षी, गाय, कुत्ते और अन्य जानवर पानी और छांव की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। ऐसे में हमारी छोटी सी मदद उनके लिए जीवनदान बन सकती है। अपने घर की छत, बालकनी या बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर पानी से भरा बर्तन जरूर रखें। पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें। यदि सड़क पर कोई जानवर प्यासा या बीमार दिखे तो उसे पानी जरूर पिलाएं और जरूरत हो तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। साथियों ध्यान रखें कि इंसानियत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती, बेजुबान जीव भी प्रकृति का अहम हिस्सा हैं। इस भीषण गर्मी में आइए हम सब मिलकर उनके लिए दया, संवेदना और जिम्मेदारी दिखाएं, क्योंकि थोड़ी सी इंसानियत किसी जीव की जान बचा सकती है। दोस्तों हीट वेव यानी गर्मी के इस दौर में जब तापमान लगातार बढ़ रहा है तब बेजुबान जीव सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। ना उनके पास पंखा है, ना ठंडी जगह है और ना ही वे अपनी परेशानी किसी से कह सकते हैं। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। आप अपने घर, दुकान या मोहल्ले के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। छतों और पेड़ों के पास पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। अगर संभव हो तो किसी पेड़ के नीचे जानवरों के लिए बैठने की व्यवस्था करें। कई बार सिर्फ एक कटोरा पानी किसी पक्षी या जानवर की जान बचा सकता है। याद रखिए, दया और करुणा ही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। गर्मी की तपती दोपहर और हीट वेव का सबसे ज़्यादा असर उन बेजुबान जीवों पर पड़ता है जो खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बिताते हैं। प्यास, भूख और तेज धूप कई पक्षियों और जानवरों

0: के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन अगर हम चाहें तो उनकी मुश्किलें थोड़ी कम कर सकते हैं। अपने आसपास पानी के छोटे छोटे बर्तन रखें, पेड़ों को बचाएं और पक्षियों के लिए दाना डालें। ये सिर्फ मदद नहीं बल्कि हमारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय भी है। दोस्तों, अगर सड़क पर कोई जानवर गर्मी से परेशान दिखे तो उसे पानी पिलाएं और सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की कोशिश करें। बच्चों को भी जीवों के प्रति दया और प्रेम का संदेश दें। एक छोटी सी पहल जैसे रोज पानी भरना या किसी प्यासे जानवर को पानी पिलाना किसी के जीवन की उम्मीद बन सकती है। आइए इस गर्मी में केवल खुद को नहीं बल्कि उन बेजुबान जीवों को भी सुरक्षित रखने का संकल्प लें जो प्रकृति की अनमोल धरोहर हैं। दया, प्रेम और संवेदना ही सच्ची मानवता की पहचान है। और इसी के साथ साथियों, कार्यक्रम में आप सभी से विदा लेने का समय हो गया है, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि कल होगा युवाणी कार्यक्रम में सेगमेंट युवा संवाद, जिसमें कल का हमारा विषय है संस्कृति संरक्षण में हमारी भूमिका। जी हाँ, संस्कृति संरक्षण में हमारी भूमिका। आप बन सकते हैं हमारे कार्यक्रम का हिस्सा डायल करके हमारा टेलीफोन नंबर 7376804090 यानी 7376804090। विषय याद रखिएगा, संस्कृति संरक्षण में हमारी भूमिका। तो जरूर बनिएगा हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा। और फिलहाल आज के युवाणी कार्यक्रम से मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त जीनत को दें अनुमति। नमस्कार।
1: Hey girls, आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा, शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।

0: हमारे युवा दोस्त सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, एक देवी गीत छोटे लाल प्रजापति और साथियों की आवाज में।

0: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
1: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 8303921911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: प्रतिमा यादव और सखियों की आवाज में आइए सुनते हैं एक किसानी गीत।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को

आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: छवि लाल पाल और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त होता है।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
2: फोन नंबर 9161877347।
0: अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में समाचारों का बुलेटिन पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
4: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
4: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य

0: भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। India and Italy have decided to elevate their bilateral ties to a special strategic partnership and enhance cooperation in areas of trade, investment and new technologies. Prime Minister Narendra Modi made the announcement following delegation-level talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 provides a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working on establishing an India-Italy Innovation Center. He added that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production of military hardware.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi also said both countries are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and noted that their joint efforts against terror financing have set an important global example. Speaking on the occasion, Italian Prime Minister stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific.

प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। एहसास मिटा, तलाश मिटी, मिट गई उम्मीदें भी। सब मिट गया, पर जो ना मिटा वो है तेरी यादें।

मेरी खामोशी को यूं इतने गौर से मत पढ़ा करो तुम। ये चुप्पी नहीं, अधूरी बातों का समंदर है। अंदर बहुत शोर है, टूटे ख्वाबों का, दबे जज्बातों का, पर बाहर सब सन्नाटा है। क्योंकि अब दर्द भी खामोश रहना सीख गया है। अगर तुम समझ गए इसे, तो तुम भी कुछ कह नहीं पाओगे। क्योंकि कुछ एहसास सिर्फ महसूस होते हैं, कहे नहीं जाते।

0: शुदा आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थीं लोफर में लता मंगेशकर को और दीवाना में कुमार सानू को। और इसी के साथ हमारा आज का फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का बुलेटिन संस्कृत में प्रसारित किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।

0: अस्ति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमंत्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह वार्तालापं कृतवान् उभौ देशौ द्विपाक्षिक संबंधं विशेषतः सामरिक सहभागित्वेन उन्नतिं कर्तुं निर्णयं अकुर्वताम् प्रधानमंत्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ भयोत्पादनं मानवतायै गभीर प्रतिरोध रूपेण पश्यतः डीआरडीओ इति संघटनेन ड्रोन प्रक्षेपितस्य मानवरहित स्पष्टता निर्देशित प्रक्षेपास्त्रस्य परीक्षणं सम्पूरितम् रक्षामन्त्रिणा एतद् व्यूहात्मकं सोपानत्वेन वर्णितम् सर्वोच्च न्यायालयेन केन्द्रस्य जातिगणनायाः निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम् अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं कोलकाता नाइट राइडर्स दलं सम्मुखीकरिष्यति अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमंत्रिणा जॉर्जिया मिलोनी इत्यनया सह प्रतिनिधिस्तरीया वार्ता कृता यस्योद्देश्यं प्रमुख क्षेत्रेषु भारत इटली देशयोः द्विपाक्षिक संबंधान इतोप्यधिकं सुदृढं कर्तुम् आसीत् व्यापारस्य निवेशस्य तंत्रज्ञानस्य रक्षायाः स्वक्षोर्जायाः सामरिक सहभागित्वस्य च क्षेत्रेषु सहकारस्य संवर्धनम् एव अस्य सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः आसीत्
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं

0: प्रणयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। उक्तं चेत् अयं विषयः सर्वकारस्य नीतिक्षेत्रस्य अन्तर्गतम् आयाति। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य नेतृत्वे पीठेन उक्तं यत् सर्वकारेण तेषां कृते कल्याणकारी उपायान् कल्पयितुम् अनुन्नत वर्गेण सम्बद्धानां जनानां संख्या अवश्यमेव ज्ञातव्या। न्यायपीठेन उक्तं यत् एतादृशं दत्तांश संग्रहणे किमपि अनुचितं नास्ति तथा च विषयेस्मिन् हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतम्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्रिणा नितिन गडकरी वर्येण अद्य नवदिल्ल्यां मन्त्रालयस्य हिन्दी परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षा कृता। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते लेखे श्रीगडकरी वर्यः अवदत् यत् हिन्दी केवलं भाषा नास्ति, सा तु राष्ट्रस्य एकीकरणस्य प्रबल माध्यमरूपेण कार्यं करोति। केन्द्रीय मन्त्रिणा उक्तं यत् मन्त्रालयस्य अधिकतमं कार्यं हिन्दीभाषायाम् एव भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तुं तस्य प्रयासः अस्ति। भारत ऋतुविभागेन अस्मिन् सप्ताहे उत्तर पश्चिम भारते तथा मध्य भारते तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थितेः संभावना प्रकटिता अस्ति। आईएमडी इत्यस्यानुसारं आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थितिः भवितुमर्हति। अत्रांतरे असम, मेघालय, केरलम, माहे, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करैकल, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु च श्वः यावत् प्रचंड वृष्टेः अपेक्षा अस्ति। अन्ते क्रीडा वार्तायां, आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। राजस्थान रॉयल्स दलेन गतरात्रौ जयपुरे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यमुं दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: समाचारों का बुलेटिन संस्कृत में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
1: कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक कहरवा हीरालाल सैनी और साथियों की आवाज में।

0: नूतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075721।
1: धरती का सुना भैल घरवा अंगनवा अंगनवा बदरा जाने को।

0: हरि प्रसाद यादव और साथियों के गाए इस किसानी गीत के साथ ही हमारा आज का लोक गीतों का कार्यक्रम गूंजी स्वर गांव की अब समाप्त होता है।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंजी स्वर गांव की। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: पंचो जय हिंद। पंच भैया, देखो अपने सब खेती किसानी के काम की जात है और यही माँ अपन सबके जौन रोजी रोजगार है उच्च चला करत है। लेकिन भैया, एकरे साथे साथे अपने सभी तमाम जौन सहयोगी व्यवसाय हैं, खास करके खेती किसानी के, वह का अपना यही। अब चाहे वो पशुपालन है, चाहे भेड़ बकरी पालन है, सुकर पालन है, मछली पालन है या फिर मधुमक्खी पालन, ये खेती किसानी से ही जुड़ा काम है का अपने सभी तमाम पंच भैया करबो करत हैं। और ऐसे अपने सबका भैया आय के तौर पर अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाता है। मूल देखो पंचो, आज है 20 मई और यह दिन का हम सब विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाई थे। पूरा विश्व आज यह दिन मनावत है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 में मधुमक्खी और मनई ये दोनों जिन्हें मिल के कौनी मेयर से पर्यावरण का पोषण और संरक्षण देते हैं, यही बात का ध्यान में रख के आज के 2026 वाला विश्व मधुमक्खी दिवस रखा गया है। विश्व में बहुत सी जगह हैं जहां मधुमक्खी से ही लोगन के भोजन और रोजगार के काम चलत है। संयुक्त

0: द्वारा पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 का मनावा गवा। यही तारीख के चुनाव आधुनिक मधुमक्खी पालक के अग्रदूत एंटोन जॉनसा के जन्मदिन पर रखा गया है। पंचो, अपने सब जौन भी भोजन के रूप में खावा पिया जाते है ना, चाहे वो साग सब्जी है, फल है, अनाज है, तिलहन है, ये की पैदावार का बढ़ावे में ये मधुमक्खी जौन है ना, ये बहुत बड़ा योगदान करते हैं। इनके साथ ही साथ और भी जौन तमाम परागण हैं, उन्होंने योगदान करते हैं। एक फूल से दूसरे फूल पर बैठ के ये परागण के जौन क्रिया है ना, वो इसका सफल बनावत हैं और यह से उत्पादन जौन बाय वो बढ़ जाते हैं उपज के। परागण से भैया अपने पारिस्थितिकी तंत्र का भी बहुत फायदा है और यह तरह से अपन जौन पर्यावरण है वह दुरुस्त रहत है। तो हमें सबका मधुमक्खी पालन करे के चाहिए। मधुमक्खी पालन धरती के एक तरह से देखा जाए तो अच्छा व्यवसाय है और बहुत मेहनती हुआ थी मधुमक्खी भैया। ये मनई और पौधा का मतलब सीधे लाभ पहुंचावत हैं। तो भैया हम तो यही कहावे मधुमक्खी पालन का व्यवसाय का ज़्यादा से ज़्यादा अपनावा जाए ताकि अपन सबके खाद्यान्न फल मेवा इकुल अच्छे से मिलत रहे और इन्हों के जीवन जोन बाय की वो चलत रहा है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात अपन जोन पर्यावरण है वही का भी संरक्षण मिले। तो मधु औषधीय गुण से भरपूर हुआ है, मोम है, तमाम चीज है जोन की बेच के हमारे मधुमक्खी पालक भैया पैसा कमाते हैं और कहूं कहूं तो देखा गया है कि जहां और कोनो चीज नहीं ना हुआ मधुमक्खी पालन से ही कुल मिला के पूरा गुजर बसर हुआ था भैया। तो ये तरह से आमदनी का एक बहुत बढ़िया जरिया है और ये अपने आस पास के क्षेत्र में ही रह के कीन जा सकत है। तो यह तरह से मधुमक्खी पालन कीन जाए और यही बात का हम ध्यान में रख के भैया ना एक दया शंकर भैया हैं जो उनकी ये बहुत बढ़िया किसानों रहे और मधुमक्खी पालन के व्यवसाय बहुत व्यापक रूप से करते हैं। उनका अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में बुलावा कर रहा है और उनसे बातचीत की इन्हें पूनम वर्मा। चलो बतावत हैं कि कैसे मधुमक्खी पालन करके वे अपने जीवन का आगे सफल बनाए हैं।
1: पंचो, जैसे
0: अभी
1: आप सुनी आज हमारे बीच में है एक प्रगतिशील किसान जिनके नाम है दया शंकर जी, जो उनकी ग्राम कसेरुआ जिला अम्बेडकर नगर के निवासी हैं और एक प्रगतिशील किसान के रूप में आज हमारे स्टूडियो में आवा हैं। इनके अनुभव है मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में। तो श्री दया शंकर जी, सबसे पहले तो आपके स्वागत करी थे अपने स्टूडियो में और यही के साथ ही हम आपसे जानना चाह कि मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आप कैसे गए, कैसे एक शुरुआत की, कहां से आपका प्रेरणा मिली?
2: ये का दो डिब्बे से मैं शुरुआत किया हूँ 2009 से।
1: हाँ।
2: अच्छा उत्पादन हुआ।
1: अच्छा।
2: उसके बाद दूसरी बार दूसरी साल से हमें सप्लाई मिलना शुरू हो गई उद्यान विभाग में।
1: अच्छा।
2: तो ऐसे हम जो है हमें काफी अच्छा लगा। इस समय मैं 1000 डिब्बे तक का व्यवसाय करता हूँ।
1: अच्छा, मतलब अपन व्यापार 2 डिब्बा से शुरू करके 1000 डिब्बा तक पहुँचा दे। तो भाई मतलब एकरे पीछे तो आपके अथक परिश्रम भी तो रहा हुए।
2: परिश्रम तो अगर कोई आदमी नहीं करेगा तो सफल नहीं होगा।
1: बात बिल्कुल सही कहा थे, खेती पाती है या उकरे साथे साथे सहायक उद्योग धंधा, मेहनत तो पूरी जानकारी दोनों जरूरी है।
2: जी।
1: तो एक जैसे शुरुआत 2 डिब्बा से कहीं, तो एक का कोनो प्रशिक्षण वगैरह भी लिए रही?
2: नहीं, हम प्रशिक्षण नहीं लिए थे।
1: हाँ।
2: मैं डायरेक्ट शुरू किया क्योंकि आपके रेडियो से कुछ सुना था।
1: हाँ।
2: बाकी जो है प्रैक्टिकल अपने हिसाब से किया।
1: अच्छा, जैसे शहद वहद निकाले में दिक्कत होते ना, अगर प्रशिक्षण ले लेते हैं तो बाखूबी होके विधिवत जानकारी दिन जाते हुआ।
2: देखे, प्रशिक्षण या कोई चीज बहुत माने नहीं रखता है। जब आप अपने लक्ष्य बना कोई काम करेंगे तो आसान हो जाता है।
1: अच्छा
2: जी।
1: तो 2 डिब्बा जब शुरू की तो जैसे आप पढ़ाई लिखाई के साथ ही का काम करता है कि?
2: नहीं, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी खत्म हो चुकी थी।
1: हाँ।
2: मैं इंटर पास हूँ।
1: अच्छा
2: जी।
1: तो खेती पाती आप ना की, उन्हें मन ना लगाई?
2: खेती में हमें कम आनंद आया, इसमें ज्यादा।
1: अच्छा अच्छा, तो ठीक है। आपके मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आपके अनुभव हम जाना चाहते हैं कि 2 डिब्बा से एक शुरुआत कहीं, तो जब कितना उत्पादन एक डिब्बा में लगभग मिल जाता है?
2: एक डिब्बा में 12 दिन 14 दिन में मौसम सही रहा तो लगभग 5 किलो 4 किलो उत्पादन हो जाता है।
1: अच्छा, तो एक कोनो डिब्बन का कोनो ऐसा जगह पे ऐसा क्षेत्र में रखत हुई है ना जो उनकी मधुमक्खियों के लिए अनुकूल हो और जहाँ पे फूल उल ज्यादा मिलत हुए, तो कैसे कहेंगे?
2: जहाँ फूल वही मधुमक्खी।
1: हाँ।
2: अगर फूल

0: नहीं है तो मधुमक्खी नहीं रह सकती।
1: अच्छा, जैसे बरसात और साथ में तो बहुत दिक्कत हो जाती
0: है। इस समय जो है मक्खी हमारे, चूंकि हम गोंडा बहराइच बलरामपुर ले जाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ
1: मतलब ये अम्बेडकर नगर के निवासी हैं और आप अपन मधुमक्खियों के बक्सा गोंडा बहराइच बलरामपुर तक ले जाते हैं।
0: जी जी।
1: अच्छा
0: जी।
1: तो ये कैसे, जैसे आप एक खोजबीन करी हुई है ना कि ये बेल्ट देखे हुई है कि यहाँ फूलन के बेल्ट बाटा या बाग बगीचा बाहियां ले चली तो अनुकूल पड़े?
0: जी जी।
1: मतलब कैसे जानकारी आपका मिली?
0: दरअसल हमारी सप्लाई जा रही थी बहराइच बलरामपुर श्रावस्ती,
1: मतलब मधु जो उत्पादन के
0: मधु का डिब्बा जाता था।
1: अच्छा
0: मक्खी,
1: अच्छा
0: मक्खी
1: अच्छा
0: का डिब्बा जाता था।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ जाते थे तो रास्ते में देखते थे कहाँ क्या है,
1: यहाँ
0: किसान क्या कर रहा है।
1: अच्छा,
0: उस हिसाब से चूँकि मधुमक्खी को अगर फूल नहीं है तो पालन बहुत जरूरी है।
1: अच्छा,
0: तो पालन की खेती वहाँ ज्यादा थी, मक्के की खेती वहाँ ज्यादा होती है। तो मक्के की खेती के नाते जो है हम वहाँ ले गए, तो वहाँ देखे कि लगभग 20 दिन की शहद निकालने की व्यवस्था बन गई कि जामुन के जंगल से हम शहद निकाल लेंगे।
1: अच्छा,
0: तो डिब्बा वहाँ लगा देते हैं, जब जामुन का डिब्बा खत्म हो जाता है फिर जहाँ नया मक्का बुआई रहती है वहाँ ले जाके रखवा देते हैं।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो जहाँ रखत हुई है वहाँ अनुमति लेक पड़त हुई क्यों से?
0: हाँ, जब आप वहाँ है तो जो कोई भी होगा तो बंजर जमीन है, बाग है, वही हमें चाहिए। हम बात कर लिए भैया, महीना 15 दिन आपके यहाँ रहेंगे, जो आप कहीं हम दे देंगे।
1: अच्छा, मतलब एक इस बक्सा की सुरक्षा के कोनो इंतजाम भी करत हुई है?
0: वहाँ 2-3 आदमी परमानेंट रहते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो यह तरह से आप एक शुरुआत की है ना, और ये बढ़ावत चला गई। तो जो कहा थे ना आपके सप्लाई जाते है, तो कैसे आप जो है एक नया बक्सा बनाए बनाए भी नई मधुमक्खियों का वहाँ भेजा करत
0: थी? दरअसल मधुमक्खी का डिब्बा 8 फ्रेम 9 फ्रेम 7 फ्रेम जैसी डिमांड होती है वैसी मक्खियां हम रख करके देते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो एक डिब्बे से मतलब कितना कितना दिन पे शहद निकाला थी ना?
0: अगर मौसम बढ़िया है तो 12 दिन में 4 किलो 5 किलो एवरेज आ जाता है।
1: मौसम बढ़िया इसका मतलब
0: जैसे धूप रहे, ठंडक में धूप रहे।
1: अच्छा,
0: मौसम जैसे खराब होगा मक्खी बाहर नहीं निकलेगी।
1: अच्छा,
0: काम नहीं करेगी।
1: अच्छा अच्छा, मतलब मौसम अच्छा है तो मधुमक्खी अपन काम करी है। तो जैसे ही तो फूलन के समय में हो ही जाता है कि फूल के खेती भय या बाग बगीचा भय जहाँ फूल मिलत है वहाँ उत्पादन शायद के बढ़िया होता है। और अगर ना है, जैसे खेत बंजर है, यह समय कटाई हो चुकी बाटे, बाग बगीचा में भी कम उ बाटे, तो खाना खुराकी कैसे मधुमक्खियों का दिए थे?
0: दरअसल ये माइग्रेशन कराने की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर मक्खी सही रखना है तो माइग्रेशन करना पड़ेगा।
1: अच्छा, माइग्रेशन से मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा? अच्छा,
0: दरअसल हमारे अम्बेडकर नगर में गन्ने का बेल्ट है, यहाँ गोंडा बहराइच बलरामपुर, यहाँ सब मक्के की खेती बहुत होती है।
1: अच्छा,
0: तो मक्के में पालन होता है, मक्खियाँ पालन ज्यादा खाती हैं।
1: अच्छा,
0: पालन के साथ साथ हमें जो है चीनी भी पिलाना पड़ता है, लेकिन मक्खियाँ हमारी अच्छी बनी रहती हैं।
1: अच्छा,
0: और जैसे ही जून का महीना 20 जून के बाद जो है जामुन खत्म हो जाती है, तब जुलाई में आ जाता है ये बन तुलसी।
1: अच्छा,
0: वहाँ जंगल में बन तुलसी का पेड़ बहुत होता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो लगभग 1 महीना हम बन तुलसी निकालते हैं। उसके बाद यूकेलिप्टस का समय आ जाता है, फूल आ जाता है, तो यूकेलिप्टस में लगाने के बाद फिर शहद आनी शुरू हो जाती है, उसके बाद सीजन आ जाता है।
1: मतलब कि ये तरह से आप बारह महीना की व्यवस्था पूरा बनाए रहा थी कि कौने महीना में हमें कौने क्षेत्र में अपने मक्खियन का रखे बाटे, और वही तरह से भाई उतना योजना बनाए के जब काम करी है तो भाई तो निश्चित है कि हमें उत्पादन तो मिलवे करे। और शहद की कीमत तो देखते हैं कि औषधीय गुण से भरपूर शहद है, और एक कंपनी का डायरेक्ट देते हैं कि क्यों ऐसे सीधे?
0: नहीं, कंपनी भी ले जाती है, हमारे यहाँ जो है 3 ब्लॉक में बच्चों को MDM में दिया जा रहा है पौष्टिक आहार के रूप में। और प्रयास ये है कि हमारे यहाँ नए जिलाधिकारी महोदय आई है।
1: अच्छा,
0: पूरा जनपद हो जाएगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: मैं प्रोसेसिंग प्लांट भी डालने जा रहा हूँ।
1: हाँ।
0: और उद्घाटन भी हमारा वही DMA महोदय करेंगे।
1: अच्छा अच्छा, चलिए दया शंकर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे आगे बढ़त रहें। और मतलब कि लगभग कितना आपके आमदनी ऐसे हो जात हुए मधुमक्खी से?
0: देखे, खर्च भी है आमदनी भी है, लगभग
1: खर्चा निकाले के बाद में
0: अरे 4-6 लाख रुपया बच जाता है। उसके अलावा सारे खर्चे परमानेंट चलते रहते हैं।
1: चलते रहते भैया।

0: लेकिन के हाँ, पढ़ाई लिखाई और घर के तमाम खर्चा तो यही मधुमक्खी से ही कि खेती भी आपके साथ साथ चलता है?
1: मधुमक्खी से ही हम ज्यादा काम करते हैं, खेती तो अपनी बटाई पर दी है।
0: अच्छा जी, मतलब मधुमक्खी में ज्यादा आप समय देते हैं, खेती में नहीं दे पाते, इसलिए खेती बटाई पे दे दिए हैं। चला यो बात सही बात है कि जो काम में हमार मन लागत बा वही काम का पूरा पूरा समय देखा है।
1: महोदया, अम्बेडकर नगर के जिले की एक शान है कि हम SSB महाराजगंज बलरामपुर श्रावस्ती बहराइच सीमा सुरक्षा बल को भी हमारे यहाँ मधुमक्खी का डिब्बा जाता है।
0: चलिए तो बहुत बढ़िया बात है, आप एक किसान हो एक हैसियत से इतना बढ़िया काम करते हैं और सहायक उद्योग धंधा के रूप में मधुमक्खी पालन के चुनाव की और में बहुत ज्यादा सफल भी हैं, बहुत बढ़िया बात है। और हम आपसे जानना चाहब कि का मक्खियन में कोनो बीमारी उमारी भी लागत है?
1: बीमारी लगती है।
0: कौन सीजन में लागत है?
1: बरसात में ही लगती।
0: अच्छा, तो मतलब एक का पहचान करती का कैसे उपाय करती?
1: बाहर निकल करके लौटने लगती है।
0: अच्छा, मतलब काहे वजह से ये होते हैं?
1: दरअसल ये कमी किसानों की होती है कि जब डिब्बा को साफ सफाई करके दवा मारते रहेंगे तो कतई बीमारी नहीं आएगी।
0: अच्छा,
1: अगर लापरवाही किए तो ये बीमारी आ जाती है।
0: मतलब कि कोनो भी तरह के अगर गंदगी इन्फेक्शन है तो मक्खियन का वो नुकसान करे थे। जैसे अपन पशुपालन हम सब करी थे, अपन घर द्वार साफ सफाई करी थे, ऐसे मक्खियन के स्वच्छता के पूरा ध्यान हमें रखे है। तो कोनो कौन दवा आप मारा थी?
1: फोरेट आता है उसका अलग से।
0: अच्छा,
1: सल्फर, वही सल्फर डाल करके डिब्बा साफ करके सल्फर डाल दिया जाता है, मक्खी फिर उसी रख दी जाती है।
0: अच्छा अच्छा,
1: और कुछ नहीं करना।
0: तो मतलब कितने दिन पे एक सफाई करे पड़ा था?
1: ये बरसात में 2-3 बार कर देने से बढ़िया मक्खियाँ एक्टिव बनी रहती है।
0: खाली बरसात में?
1: बरसात में।
0: अच्छा, बाकी साल भर ही चला करते?
1: बाकी आप हमेशा उसमें शहद निकाल रहे तो उसमें गंदगी कैसे?
0: गंदगी कहाँ से होगी?
1: यही जब खाली समय होता है तो इसी में आदमी ध्यान कम देता है। जब शहद निकल रही है तो आदमी अपने आप ध्यान दे रहा है कि हमारी मक्खियाँ गंदगी ना हो, साफ सफाई रहे।
0: तो शहद निकाले का एक तरीका भी वो थोड़ी ना कि मधुमक्खी हमें काटे ना पावे, हम उनके साथ कैसे?
1: दरअसल अब सिस्टम बहुत हो गया है। ड्रेस आया है, हाथ में दस्ताना लगा लीजिए, टोपी लगा लीजिए, शहद निकालिए। अच्छा। लेकिन हम लोग तो दस्ताना भी नहीं लगाते हैं।
0: अच्छा,
1: केवल टोपी लगाते हैं, वैसे पकड़ करके झाड़ देते हैं।
0: अच्छा
1: जी,
0: मतलब उसके छत्ता पूरा गिर जाता है?
1: हाँ नहीं, मक्खी सारी निकाल दी जाती है, बाकी छत्ते को आसानी से ले जाकर के मशीन में डाल करके निकाला जाता है जी।
0: अच्छा, तो मतलब जेका रखी हुई है वो सब बाकायदे सब ट्रेंड हुई है?
1: हाँ, ट्रेंड हो जाते हैं सब।
0: तो मतलब आपके जो अनुभव है, आप अपने जो किसान पंच हैं जो हमरे खेती पाती करत हैं, अगर सहायक धंधा के रूप में मधुमक्खी पालन का अपनावे चाहें तो अपनी ओर से का सुझाव उनका दे चाहते
1: हैं? हम उनको प्रशिक्षण दे देते हैं फ्री में। अगर हमारे यहाँ आते हैं साइड पर रुकते हैं तो उनको भोजन पानी सारी व्यवस्था दे देते हैं। और 2-3 दिन प्रैक्टिकल कराने के बाद छोड़ देते हैं, जब जान जाते हैं कल ले जाएंगे।
0: अच्छा,
1: तभी उनको देते हैं।
0: मतलब कि आप अपने घर पे होके प्रशिक्षण बाकायदे लोगन का सिखाए देते हैं कि अगर करे चाह तो यस करा। रेडियो के माध्यम से अपने श्रोता पंच के का कहा चाहते हैं?
1: हम अपने श्रोता पंच के यह कहते हैं कि अगर जो किसान भाई मधुमक्खी का काम करना चाहता है वो हमारा मोबाइल नंबर नोट कर ले। हमारा मोबाइल नंबर है 95-17-60-62-32 और हमारा एड्रेस है कबीरपुर कसरुआ अकबरपुर अम्बेडकर नगर। आप जो भी जानकारी लेना हो किसान भाई को मुझसे पूछ सकता है।
0: बिल्कुल सही बात है। देखें, आप एक किसान की हैसियत से अपने पंचायती में आई, अब अपन मधुमक्खी पालन के बारे में जो अपन अनुभव है वो का अपने किसान पंचन से साझा कीन है। और हम उम्मीद करी थे कि जैसे आप मधुमक्खी पालन कई के क्षेत्र में आगे बढ़ीन और अपन आर्थिक स्थिति का मजबूत कीन, बड़ी बड़ी सप्लाई आप देता है, वैसे हमारे और किसान पंच जो मधुमक्खी पालन करे चाहिए वह कहूँ से चाहे प्रशिक्षण लेने चाहे आपके अनुभव जाना चाहें, आपका फोन करके आपसे भी जानकारी कह सकते हैं। तो आप हमारी पंचायती में आए और अपन इतना बढ़िया जो अनुभव हमारे किसान पंचन से साझा किए, एक तई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखो पंचो, दया शंकर भैया खूब अच्छे से बताए नहीं मधुमक्खी पालन करके हुए काफी कुछ अपन ने आमदनी बनाए हैं, आगे बढ़ता है। आशा करते हैं कि जो पंच भैया सुने हैं अगर उनके मन में जिज्ञासा है मधुमक्खी पाले के तो इनसे संपर्क करके मधुमक्खी पालन व्यवसाय कर सका थे और आमदनी बढ़ा सका थे। आगे बात करी भैया तो देखो शायद खेती किसानी करे तो इससे तो कटाई पिटाई हो चुकी भाई, आगे खरीफ की तैयारी में हमारे किसान पंच भैया लाग हैं तो सरकार की ओर से भी प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान जागरूक रहें और समय से जो फसल है उसके बुवाई वगैरह करें।

0: यही बात का ध्यान में रख के मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का आयोजन जोन बा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के सभागार में आज भवा है और वहीं से एक रेडियो रिपोर्ट हम लाए ही बनाए के ओका वाचन संकलन आलोक कुमार गुप्ता भैया का है, प्रस्तुति संजय धर द्विवेदी है। चलो सुने कैसे का बताए रहा है, कैसे आगे खेती किसानी हमें करेगा बा।
1: आज दिनांक 20 मई 2026 दिन बुधवार को कृषि विभाग अयोध्या मंडल अयोध्या के तत्वाधान में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या के सभागार में मंडलीय उत्पादकता गोष्ठी 2026 का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीयुत सूर्य प्रताप शाही जी ने की। कृषि उत्पादन आयुक्त अयोध्या मंडल द्वारा कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया गया। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों के विचार एवं सुझाव कुछ इस तरह से किसान भाइयों के लिए सामने आए।
2: ओम प्रकाश मिश्र, जिला कृषि अधिकारी अयोध्या। आज मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी कुमारगंज विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हो रहा है। मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी किसान भाइयों के लिए कैसे अपने खरीफ की फसलों का एक सहफसली खेती के रूप में, प्रमुख फसल धान की उन्नत खेती, उसी के साथ मक्का, अरहर, उर्द, मूंग की खेती किस रणनीति के तहत किस तकनीकी कार्यों के साथ किसान भाई करें जिससे उनका उत्पादन और उत्पादकता बढ़े और उनके आमदनी में वृद्धि हो। आज के इस मंडली खरीफ उत्पादन गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जिनकी अध्यक्षता और उपस्थिति में माननीय कृषि राज्य मंत्री जी, कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, प्रमुख सचिव कृषि, आयुक्त अयोध्या मंडल महोदय और आयुक्त देवी पाटन मंडल महोदय के साथ ही शासन के प्रमुख सचिव, संबंधित कृषि के साथ सहकारिता अन्य विभागों के और हमारे अयोध्या मंडल और देवी पाटन मंडल के सभी जनपदों के जो नवाचार करने वाले किसान भाई हैं, वो सभी यहाँ पे किसान भाइयों के लिए जो हमारे नवाचार करने वाले किसान बंधु हैं उनके द्वारा जो कृषि में नवाचार किया जा रहा है जानकारी दिया जाएगा और खरीफ के लिए जो भी कृषि निवेश की व्यवस्था है जिसमें हरी खाद के रूप में ढैंचा, धान की विभिन्न उन्नतशील प्रजातियां, एट सोर्स सब्सिडी, फर्टिलाइजर की उपलब्धता, संतुलित मात्रा में किसान भाई किस तरह से फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, आईपीएम के बारे में, कृषि रक्षा कार्यक्रम के बारे में, कृषि के साथ ही उद्यान, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, सहकारिता की विभिन्न सेवाओं के बारे में किसान भाइयों को आज जानकारी दी जाएगी ताकि खरीफ का जो फसल उत्पादन है हमारा जो लक्ष्य है उसके अनुसार हम लोग सफलता अर्जित कर सकें।
3: मैं डॉक्टर पीके कनौजिया, उप कृषि निदेशक अयोध्या, आज इस मंडली खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में आए हुए सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं और ये गोष्ठी जो है उसमें अयोध्या और देवी पाटन मंडल के सभी जो जनपद के प्रगतिशील किसान भाई इकट्ठा हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के बहुत सारे वैज्ञानिक अपना पूरा ज्ञान देने के लिए यहां रहेंगे और इस कार्यक्रम में खरीफ की पूरी तैयारी की सारी रणनीति, चाहे वो जो है बीज से संबंधित हो, चाहे आपकी सिंचाई से संबंधित हो, चाहे आपकी उर्वरक व्यवस्था हो, चाहे आपकी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती से संबंधित हो, ढैंचा बीज वितरण, सारी बातों पर यहां जो है हमारे वैज्ञानिक है और सब कुछ आपको जो है बताने के लिए यहां बैठे हुए हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आप लोग आज तकनीकी सुने और साथ साथ किसान भाइयों को भी यह मौका दिया जाएगा कि अपना प्रश्न जो है वैज्ञानिकों से करें और अपना समुचित उत्तर लेके अपने घर जाएं और इस उन्नत खेती का जो है जो हमारा अभियान चल रहा है इसमें अपना सहयोग करें।
4: हर्षिन वर्मा, सहायक निदेशक मृदा परीक्षण अयोध्या मंडल अयोध्या। खरीफ का उत्पादन कैसे बढ़े, ये वैज्ञानिक तकनीकियों को, विधियों को शासन स्तर के नीति नियंत्रण यानी माननीय मंत्री जी में किसानों की समस्याएं भी सुनी जाएंगी, उनके सुझाव भी लिए जाएंगे और उनके द्वारा प्राप्त सुझावों को नीतिगत नीतियों में शामिल करने के लिए शासन तत्पर रहेगा जिससे किसानों को उत्पादकता बढ़ाने में बहुत सहायता। हम कह सकते हैं हमारा तो उद्देश्य सबका मानव कल्याण है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे तो मैक्सिमम आय होगी, बशर्ते ये है कि इनपुट कास्ट को कम करना है, उनके आउटपुट बढ़े, उनका इनकम बढ़े। या अब देखते हैं साइज ऑफ होल्डिंग छोटी होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस छोटे से क्षेत्रफल में हम कैसे बहुत बड़ी छोटी छोटी टेक्निक को अपना करके अपनी इनकम को बड़े रूप में कैसे कन्वर्ट कर पाए।
5: मैं डॉक्टर हुकुमचंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। हम पशुपालन विभाग से हैं। उद्देश्य ये है कि पशुपालन में किसानों को उनके पशुपालक के देख रेख और जो हमारी गाय भैंस के मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए या बकरी पालन के लिए किसान मुख्यतः उसका पालन कर रहे हैं, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कराएं, जैसे के लिए मुख्यतः गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। पशु जो दूध देने वाले हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम पानी अधिकतर पिलाएं और उनको जो है 2 से

0: तीन बार नहलाएं और उनका कंट्रोल किसान भाई ज्यादातर दादा करे, क्योंकि गर्मी से क्या होगा कि हमारे पशु बीमार भी हो सकते हैं और दूध डाउन भी हो सकता है, इससे किसानों का लॉस हो सकता है। बकरी पालन वाले किसान मुख्यतः ये है कि जो बकरी और भेड़ कर रहे हैं, मुख्यतः जो बकरियां हैं उनको शाम के समय छोड़े और सुबह अर्ली मॉर्निंग में ले जाएं चराने के लिए तो ज्यादा सही होगा। दोपहर में उनको कहीं पर बाहर न ले जाएं, तो चूंकि इसमें टेम्परेचर ज्यादा है, तो ओवरऑल हम देखेंगे पशुपालन जो हमारा है वो किसानों को जागरूक कर रहा है।
1: डॉक्टर अशोक कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ सीड साइंस टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर। हमारे यहाँ जो सीड प्रोडक्शन का होता है, ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड का, जो चीजें हैं जो लगाना किसानों को, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन सी क्रॉप लगानी है और उसमें क्या, उसमें जो है बीज दर है क्या, उसमें खाद उर्वरक सब सारे के बारे में उसमें डिस्कशन होगा, कितना एरिया प्रोडक्शन सब उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा जो है।
2: मैं डॉक्टर मनोज कुमार मौर्य, सहायक प्राध्यापक सब्जी विज्ञान विभाग, मंडली खरीफ उत्पादकता गोष्ठी है जिस, और इसमें जो है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, खरीफ फसलों कैसे बढ़ाएं और कैसे जो है वैज्ञानिक तरीके से इसमें खेती करेंगे उसके बारे में हमारे यहाँ जो भी वैज्ञानिक है वो जानकारी देंगे। इसमें जो डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है वो टेक्नोलॉजी के देख के अपने यहाँ फार्म पे अपना कर अधिक से अधिक अपना आय अर्जित करते हैं।
3: डॉक्टर आरबी सिंह, देशक प्रसार, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या। चूंकि मंडलीय गोष्ठी जो हमारी होती है, जो खरीफ के सीजन में किसानों की जो खेती बाड़ी से संबंधित जितनी भी फसलों की तैयारी, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे जो भी एजेंसियां हो जो कृषि से संबंधित हैं और किसानों से जुड़ी हुई हैं, और किसानों की खेती में खरीफ में क्या क्या लगाना है उससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं, बीज है, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात है, और ये सारी जानकारी के लिए हमारे किसान यहाँ एकत्रित होते हैं। और का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कौन कौन सी कृषि की विधाएं अपनाई जाए और इन विधाओं को किस तरह से हम खेतों पे लागू कर सकते हैं और किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना, उसमें जितनी भी तकनीकियों का प्रयोग हो रहा है उस तकनीकी को डिस्प्ले करके किसानों तक पहुंचाना, यही हमारा इस मंडलीय गोष्ठी पंडाल में हमारा जो प्रदर्शन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, और ये जो प्रदर्शनी लगाई जा रही है इसका मुख्य उद्देश्य यही है।
4: मैं डॉक्टर रामजीत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान के अम्बेडकर नगर से। किसान भाई मधुमक्खी पालन भी करें, मशरूम उत्पादन करें, और जो हमारी नई नई जो प्रजातियां आने वाले समय में धान की नई नई प्रजातियां हैं, जैसे उसमें जो MTU 1729 है, BPT 5204 है, नरेंद्र है, इन प्रजातियों को अपना करके, या विश्वविद्यालय की K3 काला नमक प्रजाति है जो सुगंधित प्रजातियां हैं, इसको अपना करके वो अपने धान का उत्पादन ले सकते हैं। तो हमारे किसान भाई अपनी उस खेती के साथ साथ थोड़े से किचन वाटिका में अपने जो है उसमें हल्दी भी पैदा कर सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, जो कि प्राकृतिक गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर आधारित है, यहाँ पर उसका जो है होल जो है हमारे जो है वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ किया गया। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं कि जो श्री अन्न की हमारी प्रजातियाँ हैं, सावा है, कोदो है, मरुआ, रागी, श्री अन्न जो है कृषि विज्ञान केंद्र में क्रॉप क्राइटेरिया के माध्यम से, और जो है किसानों को फ्रंट लाइन डिमांड जिसको कहते हैं अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से किसान भाइयों को दिया जाता है। इसमें प्रदर्शनी में आप सावा, कोदो, मरुआ, रागी भी देख रहे हैं, और एजोला जो हमारे किसान भाई यदि अपने खेतों में करते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट काफी मिलती है, अपने पशुओं को खिलाते हैं, और विशेष तौर से जो हमारे मुर्गी पालक भाई हैं यदि अपने मुर्गियों को खिलाते हैं 25 से 30 ग्राम पर मुर्गी को अगर खिलाते हैं एजोला, तो उससे उनमें जो है जो न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ेगी और वो विकास और वृद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे।
5: हाँ, मैं डॉक्टर विद्यासागर, कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा, अयोध्या में पशुपालन वैज्ञानिक हूँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के रूप में गुड़ का हम लोग का बढ़ावा दे रहे हैं प्रसंस्करण पर, खास करके हमारे यहाँ किसान जैसे गुड़ उत्पादित कर रहे हैं तो उनको खास करके गुड़ के उत्पाद के रूप में विभिन्न प्रकार के जो साँचे आते हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनसे जो विभिन्न प्रकार के वैल्यू एडिशन भी हो रहा है, जैसे तिल का और चीजों का, सूखे मेवे का, तो उससे फायदा है। जहाँ गुड़ नॉर्मली जो जाता है वो 50-60 रुपए केजी जाता है, और ये जो 1 किलो का या 1/2 किलो का भी पैक बना करके प्रोसेसिंग दे रहे हैं तो ये 100 से 150 किलो 200 किलो तक ये, मतलब तो इसको तुरंत जो लोग जानकार हैं का जैसे ज्यादा खाते पीते हैं वो उनके घर से ही ले रहे हैं।
6: कार्यक्रम के समापन में माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा,
7: सरकार के प्रयासों से जो कृषि सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई उसके नाते खरीफ का भी आच्छादन विगत वर्षों की तुलना में लगभग 10 लाख हेक्टेयर के भीतर वृद्धि हुई, और उस वृद्धि के हो जाने के कारण हमारा किसान आर्थिक रूप से जहां सशक्त हुआ है वहीं पर राज्य का खाद्यान्न उत्पादन देश में आज सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। हम खरीफ के सीजन की

0: धान के फसल में देश के भीतर तीसरे नंबर पर थे और तीसरे नंबर से चलते हुए पिछले साल धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश भर में सर्वप्रथम प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश आया। पहले हम गेहूं में थे, आज भी हैं और साथ साथ में खरीफ के मौसम में हम धान उत्पादन में भी आज देश के भीतर नंबर एक पर पहुंचे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने मिलकर के आप सबके सहयोग से ये तय किया है कि साल 110 लाख हेक्टेयर के भीतर उत्तर प्रदेश में खरीफ की खेती की जाएगी और उसमें से कोशिश ये है कि धान के रकबे को थोड़ा कम किया जाए और दाल और तेल के खेती को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमारा देश भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है लेकिन दलहन और तिलहन के उत्पादन में अभी भी देश के आवश्यकताओं के अनुरूप हमारा उत्पादन उतना नहीं हो रहा और उसके कारण से लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का दाल भारत सरकार को बाहर से खरीद करके मंगानी पड़ी और इसी तरीके से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का खाने का तेल हर साल इम्पोर्ट करना पड़ता है। हम ये देख रहे हैं कि वैश्विक परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं। खाद्यान्न के क्षेत्र में ऐसी चुनौतियां न आने पाए यह जिम्मेदारी हमारे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों की है, यह जिम्मेदारी देश के किसान भाइयों की है।
1: कार्यक्रम में वाचन एवं संकलन आलोक कुमार गुप्ता का एवं प्रस्तुति संजय धर द्विवेदी की।
2: तो पंचों में देखो आज के कार्यक्रम भैया यहीं तक, आगे फिर कोनो दिन पंचायती में मिलवाए। अभी सुनिए रेडियो रिपोर्ट मंडलीय खरीफ गोष्ठी पे आधारित रही है। तो भैया हमें यानी मतुल्य भैया का अनुमति दियो। पंचो जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। 7:30 से हम सुनवाएंगे विशेष भेंटवार्ता आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी अयोध्या के स्टूडियो में श्री अनिल श्रीवास्तव अपर महानिदेशक प्रसार भारती से उष्मा वर्मा द्वारा की गई बातचीत। गीत कुंजन कार्यक्रम हम सुनवाएंगे 8:15 से। गजलों का कार्यक्रम महफिल ए गजल आप सुन सकेंगे 9:15 से। और सजीव फोन इन कार्यक्रम सुनवाया जाएगा 9:30 से 10:30 तक। और अब कल के कार्यक्रम विवरण। कल प्रातः 7:15 से बताया जाएगा दिन भर का कार्यक्रम विवरण। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुन सकेंगे 7:30 से। और सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम सुनवाया जाएगा 8:15 से। कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में प्रातः 8:30 से सुना जा सकता है। आज की बात विषय होगा राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस। पीलिया कारण रक्षण और उपचार के बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर चंद्रमौली पांडे, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक अयोध्या। और समाचार पत्रों से व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत आपके संदेश आपके गीत हम सुनवाएंगे 9:00 से। और सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या सुना जा सकता है 9:30 से। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुन सकेंगे 10:00 से। अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग सुनवाया जाएगा 12:30 से। 12:00 फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कुछ तुमने कहा सुना जा सकता है कल दोपहर 1:00 से। गीतांजलि कार्यक्रम हम सुनवाएंगे दोपहर 2:00 से। और 2:30 से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम नारी जगत जिसमें सुना जा सकता है चर्चा। विषय होगा राष्ट्रीय आतंकवाद निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि। साथ ही सुनेंगे जीव है प्रकृति के अभिन्न अंग विषय पर गीतों भरी कहानी और किचन टिप्स। कल युवाड़ी कार्यक्रम है 5:00 प्रसारित किया जाएगा फोन इन कार्यक्रम युवा संवाद। विषय होगा संस्कृति संरक्षण में हमारी भूमिका। लोक संगीत

0: सुन सकेंगे कल शाम 5:30 से, शाम सुहानी 6:10 से और गूंजी सुरगांव की 6:30 से। किसान वाड़ी कार्यक्रम में कल शाम 6:45 से प्रसारित किया जाएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम किसान हेल्पलाइन। विशेषज्ञ श्री विनायक प्रताप शाही जी से जानकारी ले सकते हैं जायत में सब्जियों और बागवानी प्रबंधन के बारे में। गीत गुंजन 8:15 से, महफिल ए गजल 9:15 से, हेलो अयोध्या 9:30 से 10:30 तक प्रसारित किया जाएगा कल भी और आज भी। तो श्रोताओं, ये थे कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण और अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ केंद्र, सुनते हैं प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्यघर।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश, अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक, गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होगी मकानों की गिनती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त शहरी और ग्रामीण चिकित्सा स्थानों में गर्मी से पीड़ितों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए हैं। तेज गर्मी से वन्य जीवों को बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क के उपनिदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी में शेरों के लिए एसी और खस की चटाई का प्रबंध किया गया है।
5: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव हैं उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। जो भी ब्रीडिंग वाली शेरनी है, उसके नवजात बच्चे रहते हैं, शावक रहते हैं साथ में, उनको एसी के माध्यम से उनके कमरे का तापमान मेंटेन किया जाता है।
4: गर्मी और लू से बचाव के लिए विभिन्न जनपदों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मिर्जापुर में भी 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कानपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी गंभीर चिंता

0: व्यक्त की। श्री प्रधान ने ऐसे नेटवर्कों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जिसमें फर्जी जानकारी फैलाने वाले चैनलों की सक्रिय पहचान, उन्हें ब्लॉक करना और हटाना शामिल है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचना पर तुरंत रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कल 44 जिलों के 861 केंद्रों पर होगी। करीब 8000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं और होल्डिंग एरिया बनाए जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए। गर्मी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति, पीने का पानी की व्यवस्था के अलावा नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। परीक्षा की जिला और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाएगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है जो 21 मई की रात 12:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और सुबह 6:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में लखनऊ गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 6:15 बजे लखनऊ से कर 11:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इनहाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
2: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन है। राज्य के जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि नागरिकों को स्वगणना के लिए census.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि गणना पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा जिसे प्रगणक के घर आने पर देना होगा जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। उन्होंने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी जो 22 जून तक चलेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो।
3: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से एमएसएमई विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाई

0: एनजीओ के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
1: प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी। नई उड़ान सेवा शुरू होने से प्रयागराज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
2: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है, और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी, क्योंकि अभी उसका पूर्णतः वो नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी, तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समर शेड्यूल में प्रोग्राम है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होंगी मकानों की गिनती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
4: प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष भेंट वार्ता। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी अयोध्या के स्टूडियो में श्री अनिल श्रीवास्तव, अपर महानिदेशक प्रसार भारती से ऊष्मा वर्मा द्वारा की गई बातचीत, आइए सुने।
5: श्रोताओ, कल्पना की रात बीती, भोर की स्पष्टता में कुछ सुगंधित पवन आई, सिर झुकाए शिष्टता में कुछ अनुत्तरित प्रश्न ठिठके हैं अधर पर, सहज अंतर मुस्कुराता श्रेष्ठता में। आज कुछ ऐसा ही सुखद शांत वातावरण है आकाशवाणी केंद्र अयोध्या का। कई दशकों से हमारे आकाशवाणी परिवार के, हमारे श्रोताओं के और उन तमाम जिज्ञासुओं के मन में कुछ प्रश्न थे जो उपयुक्त व्यक्तित्व की प्रतीक्षा में मौन थे, किंतु आज हमारे स्टूडियो में हम सबके बीच उपस्थित हैं प्रसार भारती के अपर महानिदेशक श्री अनिल श्रीवास्तव जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद उष्मा जी, धन्यवाद आकाशवाणी अयोध्या कि आपने मुझे इस साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया, और ये भगवान राम की कृपा है कि मैं अयोध्या नगरी में बैठा हूँ
5: जी,
6: और अपने आकाशवाणी अयोध्या का निरीक्षण और आपसे वार्ता भी कर रहा हूँ। वार्ता के दौरान हम लोग विभिन्न पहलुओं को छुएंगे
5: जी,
6: तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ।
5: बात अयोध्या की हो रही है, आप यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले मैं इसी पर बात कर लेती हूँ कि अयोध्या प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, तो इस नाते वो हमेशा से जानी जा रही है। लेकिन 1992 से लेकर के और ये 22 जनवरी 2024 में जबकि प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा भी है और ये आकर्षण का मुख्य केंद्र भी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये चूंकि धार्मिक नगरी है और हमारी सांस्कृतिक विरासत है, प्रसार भारती इसे किस नजरिए से देख रही है?
6: देखिए, प्रसार भारती के बारे में अगर हम बात करें अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में,
5: जी जी,
6: आपने 92 की बात की, मैं थोड़ा उसको और पहले ले जाना चाहूंगा, सन 1989
5: जी बिल्कुल,
6: जब शिलान्यास के लिए मंदिर के जो भगवान राम बंद थे कपाट खोले गए थे
5: जी जी।
6: ये धार्मिक आस्था का विषय है, धर्म पूर्णता आस्था का व्यक्तिगत विषय होता है
5: जी।
6: भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे कण कण में बसते हैं, लेकिन सन 89 के बाद से

0: धर्म के साथ साथ ये राजनीति का विषय भी हो गया
1: जी बिल्कुल।
0: फिर 1992 में जो घटनाएं घटी, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद हिंदुओं की आस्था का ये बहुत बड़ा प्रतीक है
1: जी बिल्कुल।
0: हर आदमी चाहता था कि यहाँ पे राम मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पे एक लंबी लड़ाई के बाद हमारी वर्तमान सरकार भाजपा की
1: जी,
0: आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में
1: जी जी,
0: क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था
1: जी,
0: तो ये राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ है इससे पूरा जनमानस आह्लादित है
1: जी,
0: और आनंदित है
1: जी,
0: और उसको लगता है कि हाँ धर्म को भी हमें उतनी ही मान्यता मिल रही है जितना इस अयोध्या नगरी को मिलना चाहिए। तो हमें तो बड़ा गर्व महसूस होता है अयोध्या से जुड़कर
1: जी जी। एक चीज और सर, कि समय के साथ जैसे जैसे समय बदलता है हमारी चुनौतियां भी बदलती हैं, और चुनौतियां हमेशा से रहती हैं, खास करके तब रहती हैं कि जब हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करने जब भी निकलते हैं तो हमारे सामने चुनौतियां आती हैं। प्रसार भारती के सामने, चाहे वो आकाशवाणी रहा हो चाहे वो दूरदर्शन हो, वो कौन सी चुनौतियां हैं कि जो हम उस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उनको हैंडल कैसे कर रहे हैं?
0: देखिए, प्रसार भारती के सामने चुनौतियां तो अनगिनत हैं। अगर हम सिर्फ चुनौतियों तक अपने को सीमित रखें, और चाहे आकाशवाणी हो दूरदर्शन हो, जैसा आप सबको पता है कि प्रसार भारती, चूंकि मैं प्रसार भारती मुख्यालय में हूँ
1: जी सर,
0: तो हम दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से जनता से रूबरू होते हैं
1: जी,
0: ऑडियो के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से
1: जी।
0: आकाशवाणी की अपनी एक परंपरा रही है
1: जी।
0: एक समय था जिस समय आकाशवाणी की मोनोपोली हुआ करती थी
1: जी, जी।
0: देश की आवाज अगर कुछ बोली जाती थी वो आकाशवाणी होती थी। समाज की, संस्कृति की और राजनीति की आवाज आकाशवाणी के माध्यम से प्रस्तुत की जाती थी
1: जी।
0: अब माध्यम बदल गए हैं, लोगों की च्वाइस बदल गई है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा हुए हैं, प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले मीडियम वेव पे हम ऑपरेट करते थे
1: जी,
0: शॉर्ट वेव पे ऑपरेट करते थे, धीरे धीरे हमने शॉर्ट वेव से जाके अब एफएम पे आ गए। एफएम में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया कि इतने एफएम चैनल्स आ गए कि हमारा आकाशवाणी खो गया उसके बीच में
1: जी।
0: हम तकनीकी रूप से पीछे रह गए, हम मार्केटिंग में थोड़ा सा पीछे रह गए, हम थोड़ा सा जनता से जुड़ने में, चूंकि हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, लोक प्रसारक हैं, उसके नाते भी अपनी जो प्रतिबद्धताएं हैं उसके तहत हम, मैं बार बार कभी कभी चिंतित भी होता हूं आकाशवाणी को लेकर कि हमको पहले वाली जो हमारी महत्वपूर्ण स्थिति थी वो पुनः स्थापित करनी है, बल्कि उससे और कहीं आगे जाना है। ये चुनौतियां तो हैं और हम लोग इस दिशा में बहुत प्रयास कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं कि आकाशवाणी पुनः अपनी खोई हुई स्थिति को प्राप्त करेगा और हम नए कलेवर के साथ जनता के सामने रूबरू होंगे, मुझे तो संदेह नहीं दिखाई देता।
1: सर ये बात तो है, लेकिन मैं अपने श्रोताओं की तरफ से एक सवाल और करना चाहूंगी कि देखिए, प्रसार भारती, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहा है, जनमानस की भावनाओं को ध्यान भी रख रहा है, उनके हितों का भी ध्यान रख रहा है। लेकिन ये समसामयिक प्रश्न कह लें, कई सारे हमारे जो केंद्र हैं वो कहीं ना कहीं जैसे बंद हो रहे हैं, समेटे जा रहे हैं, सीमित किए जा रहे हैं, इस पर सर मूल कारण क्या है? उसकी भी पहुंच तो जनमानस तक थी, तो ऐसा क्यों हो?
0: देखिए, पहला आपको समझना पड़ेगा और श्रोताओं को भी समझना पड़ेगा कि आकाशवाणी जो पहले था एक सीमित तकनीक के साथ काम करता था
1: जी।
0: हमारे मीडियम वेव ट्रांसमीटर्स, शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर जो होते थे उनकी परिधि बहुत छोटी हुआ करती थी
1: जी जी।
0: अब हमारे ट्रांसमीटर्स एडवांस टेक्नोलॉजीज के हैं
1: जी।
0: उनकी जो स्पेक्ट्रम है बहुत लंबा हो गया है
1: जी।
0: पहले वो अगर 5-10 किलोमीटर में ऑपरेट करते थे, अब वो 400-300 किलोमीटर तक हमारे ट्रांसमीटर्स की फ्रीक्वेंसीज जा रही हैं
1: जी जी।
0: तो अब हमें 10 जगह ऑपरेट करने की बजाय हम 2 सेंटर से भी उससे ज्यादा ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं
1: जी जी।
0: अब हम 1 KV पे भी न जाके हम 10 KV ट्रांसमीटर्स लगा रहे हैं
1: जी।
0: आगे हम 20 KV और 50 kW के ट्रांसमीटर लगाने जा रहे हैं, जिनके में तकनीकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी
1: जी।
0: और उनका परिधि भी बढ़ेगा
1: जी जी।
0: तो ये कहना कि पहले केंद्र थे, पहले तो समय छोटा था, तकनीकी साधन हमारे पास पर्याप्त नहीं थे, आवश्यकताएं कम थी, तो हम विभिन्न केंद्रों के माध्यम से ऑपरेट करते थे
1: जी।
0: अब काम हम उससे बेहतर कर रहे हैं और उससे बेहतर करेंगे भी
1: जी।
0: लेकिन उन्नत तकनीक का प्रयोग करके एक सेंट्रलाइज और फोकस्ड अप्रोच के साथ
1: जी।
0: तो छोटे छोटे केंद्र जिन जो रिडंडेंट हो चुके हैं
1: जी,
0: जिनका आज के वर्तमान समय में उतनी प्रासंगिकता नहीं रह गई है
1: जी।
0: तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना रेलेवेंस खो चुके हैं, चाहे हमारे लो पावर ट्रांसमीटर हो चाहे हाई पावर ट्रांसमीटर हो, क्योंकि हम नई तकनीक पे जा रहे हैं तो उसका हमारे ख्याल से

0: तो आगे हो सकता है आपको इस तरह के प्रश्न करने का और अवसर मिले।
1: बिल्कुल सर, हम यही कहने जा रहे थे कि आपका जवाब इतना तार्किक है और वो तथ्य पर आधारित है, तो मुझे लगता है जो श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। और जब हम श्रोताओं की बात कर रहे हैं सर, तो एक आपसे और निवेदन करना चाहेंगे कि आपको संगीत में बहुत अभिरुचि है, जितना मुझे

0: संगीत में बहुत अभिरुचि है जितना मुझे जानकारी है, और मैं चाहूंगी कि हमारे जो श्रोता कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें अपनी पसंद का कोई एक अच्छा सा गीत सुनाए।
1: देखिए, जब मैं चूंकि एक नौकरशाह हूँ, ब्यूरोक्रेट हूँ
0: जी,
1: और हम लोग बड़ी विसंगतिपूर्ण स्थिति में रहते हैं, तो मुझे बशीर बद्र की एक गजल याद आती है। मैं चाहूंगा कि वो गजल आप जरूर बजाइएगा, चित्रा सिंह ने गाई है
0: जी।
1: खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई
0: न दे।
1: खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खतावार समझेगी दुनिया तुझे अब इतनी भी ज्यादा सफाई न दे। चित्रा सिंह ने गाई है
0: जी,
1: बड़ी खूबसूरत गजल है
0: जी जी।
1: तो अब हमको अपने बारे में बात नहीं करना है,
0: हाँ।
1: हमें जनता के बारे में बात करना है, लोगों के मन की बात करना है। तो चित्रा सिंह की गजल बड़ी प्रासंगिक लगती है, अगर आप बजा सकेंगे तो श्रोताओं को अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल, और श्रोता हमारी इस गजल को सुने और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें दें। इतनी सुंदर सी पसंद, और इसके बोल इतने अच्छे हैं कि वो सभी के लिए बहुत संदेशप्रद हैं।

0: सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि जब हम प्रसार भारती की बात करते हैं, आकाशवाणी या दूरदर्शन की बात करते हैं, तो किसी भी संस्था का जो आधारभूत स्तंभ होता है उसका वित्तीय प्रबंधन होता है, और आजकल तो जो बाजारीकरण का दौर है, ऐसी स्थिति में प्रसार भारती का जो वित्तीय प्रबंधन है वो खुद को कैसे एस्टेब्लिश कर रहा है, कैसे ये कार्य होता है, ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: हाँ, श्रोताओं को ये बात समझनी पड़ेगी, किसी भी संस्थान के लिए वित्तीय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है।
0: जी जी,
1: कि सारा खेल पैसे का होता
0: है। पैसे का है जी।
1: बिना पैसे के आप योजनाएं बना के कुछ नहीं कर सकते, जब तक उनको अमली जामा न पहना है
0: जी।
1: और अमली जामा पहनाने के लिए आपको वित्त की जरूरत होती है, आकाशवाणी हो या दूरदर्शन हो। चूंकि हम लोक प्रसारक हैं, तो हम लोक प्रसारक के नाते अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक दायित्वों से बंधे हुए हैं, प्रतिबद्ध हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: हम अपने कंटेंट में स्वच्छंदता नहीं ला सकते।
0: बिल्कुल सर।
1: हम स्वतंत्रता नहीं ला सकते कि हम किसी भी तरीके से उच्छृंखल नहीं हो सकते, तो हम वहां पे थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। आज की जनरेशन नई तरीके की बात, वही बात दूसरे तरीके से सुनना चाहती है जो हम अपने शब्दों में नहीं ला सकते। वो भारतीय संस्कृति हमको रोकती है
0: जी।
1: हमारी परंपराएं हमको रोकती हैं, तो वो बाकी चैनल जो हैं इसी कारण से थोड़े हमसे आगे दिखाई दे जाते हैं
0: जी।
1: जब इस तरह की चीजें होती है तो हमारा मार्केट शेयर कम होता है
0: जी।
1: हमारी एक्सेप्टेंस कम होती है, हमारी टीआरपी थोड़ी सी डाउन होती दिखाई देती है
0: जी।
1: जब टीआरपी डाउन होती है तो हमारा वित्तीय प्रबंधन भी, तो धीरे धीरे धीरे धीरे हम लोग इस दिशा में बहुत सजग हैं। 2-3 साल से हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरीके से लोगों के मन की बात कहते हुए अपने वित्तीय प्रबंधन को अच्छा कर पाएं
0: जी।
1: मार्केटिंग और सेल्स को बढ़ा पाएं
0: जी जी।
1: ताकि रेवेन्यू तो हमारा बढ़ाना हमारा फोकस है, बिना रेवेन्यू बढ़ाए तो हम आगे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट चैनल्स जो हैं
0: जी।
1: वो इस दिशा में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं
0: जी।
1: तो हमारे लिए चिंता का विषय तो है, लेकिन हाँ कुछ न कुछ प्रयास तो हम करेंगे।
0: बिल्कुल सर। एक चीज आकाशवाणी में बहुत स्ट्रेस करती है, ये बहुत सुनने में आता है कि हमारी यूएसपी क्या है, हम इस पर चाहेंगे कि थोड़ा प्रकाश डालें।
1: यूएसपी, बिल्कुल सही बात आपने कहा।

0: यूनिट सेल प्राइस हमारी, क्यों लोग हमको सुने, यूएसपी का मतलब सिंपल सिंधी, लोग हम तक क्यों जुड़े, हमसे हमको ही क्यों सुने। तो श्रोताओं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आकाशवाणी हमारा जो संस्थान है वो एकमात्र एक माध्यम है मीडिया में जो आपको सही सटीक और स्वस्थ जानकारी देता है
1: जी।
0: हम किसी भी बात को नमक मिर्च लगा के कहानी बनाकर प्रस्तुत नहीं करते,
1: नहीं करेंगे जी।
0: हम जनता के दिमाग को छेड़ना नहीं चाहते। प्रसार भारती का दायित्व तो है इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, सूचना देना, मनोरंजन देना और जानकारी देना। लेकिन इसके साथ हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते इसमें एक प्रतिबद्धता लेके आते हैं, हम हेल्दी एंटरटेनमेंट देंगे
1: जी। जी बिल्कुल,
0: हम आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। थोड़ा सा देर हो सकती है लेकिन हम गलत बात आपको प्रस्तुत नहीं करेंगे,
1: नहीं करेंगे।
0: तो अगर आपको स्वस्थ मनोरंजन चाहिए, परिवार के साथ देखना चाहिए, तो आपको दूरदर्शन आकाशवाणी पर मिलेगा। सही जानकारी आपको चाहिए तो हम जो बात कहेंगे उसके पीछे बड़ी रिसर्च होता है और तथ्य परक होता है। हम कोई भी बात कह के बाद में सॉरी कहने के लिए नहीं है कि हम ब्रेकिंग न्यूज नहीं देना चाहते
1: जी। जी बिल्कुल,
0: खबरों को सत्यापित किए बगैर हम आपको प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो यही हमारी यूएसपी है कि हम जो बात कह रहे हैं उसका वो तथ्य है, वो सटीक है और थोड़ा सा हो सकता है आपको आधे घंटे एक घंटे का टाइम गैप जरूर दिखाई दे जाए
1: जी, जी।
0: लेकिन हम जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लेंगे तब तक आपके पास नहीं आएंगे। मनोरंजन तो हम देंगे आपको, अच्छा मनोरंजन देंगे, जो आप चाहेंगे वही देंगे, लेकिन इट वुड बी हेल्दी कंटेंट। दिस इज आवर यूएसपी।
1: बिल्कुल सर। और श्रोताओं देखिए, अगर देर भले हो लेकिन दुरुस्त हो, अगर इस पर चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको आकाशवाणी, दूरदर्शन और हमारे प्रसार भारती के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो इसी मानक पर खरे उतरेंगे और आपको स्वस्थ मनोरंजन देंगे। सर, सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है, पलक झपकते ही हर खबर जहां हमारी आंखों के सामने बिल्कुल सजीव हो जाती है। ऐसे में तकनीकी तौर पर आकाशवाणी ने खुद को कितना अपडेट किया है? और मैं सर ये भी जानना चाहूंगी कि हमारे श्रोता जो है वो किन किन प्लेटफॉर्म पे हमारे कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से सुन सकते हैं।
0: जैसे मैंने पहले भी बताया कि आकाशवाणी का एक दौर था जब हम रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी को सुना करते थे,
1: बिल्कुल
0: मीडियम वेव पर सुनते थे, फिर शॉर्ट वेव पे आए, फिर एफएम पे आ गए। आज हम एफएम सुनना पसंद करते हैं। तो एक वो दौर था जिसमें हम ग्रेजुअली धीरे धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर उसके बाद हमारा सोशल मीडिया का जो वर्तमान दौर आया है, डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास उपलब्ध हैं। आज की किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है कि रेडियो ऑन करके गाना सुने, रेडियो ऑन करके काम। वो इतना व्यस्त है अपनी दिनचर्या में, रोजी रोटी में, जिंदगी की जद्दोजहद में वो इतना व्यस्त है कि मनोरंजन उसके जीवन से खत्म हो गया है। वो दो घंटा बैठ के मनोरंजन नहीं कर सकता
1: जी।
0: वो अपनी एक हाथ में मोबाइल लेके घूम रहा है, वही उसकी दुनिया है
1: जी।
0: चाहे उसमें रेडियो, यूट्यूब देखना चाहे, टीवी देखना चाहे। तो हमने अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाया है
1: जी।
0: मैं आपको श्रोताओं बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रसार भारती का, आकाशवाणी का, दूरदर्शन का न्यूज ऑन एयर ऐप आप जरूर उसको डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड करिए। उसमें आपको ऑल इंडिया के सारे आकाशवाणी और दूरदर्शन के लाइव चैनल्स मिलेंगे। आप चेन्नई में बैठे हैं और आप आकाशवाणी अयोध्या सुनना चाहते हैं तो उसको आपको उसके वेवलेंथ में और उसके ट्रांसमिशन रेंज में आने की जरूरत नहीं है। ये रेडियो कनेक्टिविटी के माध्यम से आप चेन्नई में बैठ के आकाशवाणी अयोध्या सुन सकते हैं, अयोध्या में बैठकर चेन्नई सुन सकते हैं, ईटानगर सुन सकते हैं, मुंबई सुन सकते हैं। न्यूज ऑन एयर ऐप NEWS ऑन AIR बस इतना टाइप करिएगा, डाउनलोड करिए, लाइव पे जाइए, न्यूज ऑन एयर ऐप है। इट्स अ वंडरफुल ऐप। हमने 2024 में वेव्स OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हमारे सारे चैनल फ्री डिश के जितने चैनल्स हैं, आकाशवाणी के सारे चैनल्स हैं, दूरदर्शन के सारे चैनल हैं, फ्री अवेलेबल हैं
1: जी।
0: फेसबुक पे हमारी अवेलेबिलिटी है, हर स्टेशन के अपना फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे हम मौजूद हैं, यूट्यूब पे हमारे सारे कंटेंट जाते हैं
1: जी।
0: तो हमने सोशल मीडिया प्रेजेंस भी अपना बहुत ज्यादा बढ़ाया है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रयोग करके देखिए, हमसे जुड़िए, हमारी कमियां बताइए, हमारी अच्छाइयों की तारीफ करिए, देखिए आनंद आएगा आपको आकाशवाणी से जुड़कर।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता सर जो कार्यक्रम सुन रहे हैं अब तो उन्हें लग रहा होगा कि काफी आसानी है क्योंकि मोबाइल तो सभी के पास है, हर घर में है, तो वो हमारे कार्यक्रम को सुन सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं। सर, एक व्यक्तिगत आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपको जब भी आकाशवाणी पर या दूरदर्शन पर सुना है, आपने अपनी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आप सुनाते रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप अपनी कोई एक रचना या जो आपको पसंद हो

0: हमारे
1: देखिए, मैं थोड़ा लिखता पढ़ता हूँ
0: जी,
1: और मुझे लगता है कि नौकरी एक साधन है, साध्य नहीं है।
0: बिल्कुल सर,
1: जीवन जीने का
0: जी,
1: ये रोजी रोटी का एक जरिया हो सकता है, लेकिन हम इसलिए नहीं जी रहे हैं
0: जी।
1: तो उसके लिए मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ सोचता हूँ
0: जी,
1: दार्शनिक के स्तर पर भी कभी सोचता हूँ
0: जी। बिल्कुल,
1: कंडक्ट रूल से बंधा हूँ तो थोड़ा डरता भी हूँ कि क्या कह दूँ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है
0: जी, जी।
1: कोई नाराज ना हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ लिखता हूँ। मैं दो तीन आपको अपने पसंदीदा शेर सुना देता हूँ।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनाए।
1: मैं एक जब दौर में था, जब मैं IAS की तैयारी कर रहा था, तो उस समय एक मुझे शेर याद आता है, यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े
0: जी।
1: यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरें खाएं तो दिल हमारा बढ़े।
0: वाह।
1: यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरें खाएं तो दिल हमारा बढ़े। अरे इस कदर जम के तूफान में रखो कदम, कि कदम चूमने को किनारा बढ़े।
0: क्या बात,
1: कि कदम चूमने को किनारा बढ़े।
0: अच्छा।
1: हम लोग जब स्टूडेंट थे, यंग थे, व्यवस्थाओं में आए थे, तो उस समय लगता था हम व्यवस्था बदल देंगे
0: जी।
1: तो उस पे मुझे दो शेर याद आते हैं, आपकी इजाजत हो तो।
0: इरशाद, इरशाद से।
1: एक वक्त था जब हम जंजीर हिला देते थे, आपको याद होगा, जहांगीर के दरबार में
0: जी जी,
1: न्याय मांगने के लिए जंजीर हिलाई जाती थी। उसी परिप्रेक्ष्य में है, एक वक्त था जब हम जंजीर हिला देते थे, अब तो होंठ हिलाने से भी डर लगता है।
0: क्या बात,
1: अब तो होंठ हिलाने से भी डर लगता है।
0: बहुत सुंदर,
1: सत्य बोलना आज के जमाने में
0: बहुत मुश्किल का
1: गुरु हो गया है,
0: मुश्किल का
1: असंभव हो गया, मुश्किल क्या असंभव हो गया
0: है जी।
1: तो उस पे एक शेर मुझे याद आता है
0: जी। बिल्कुल,
1: जी बहुत चाहता है कि सच बोले,
0: जी बहुत चाहता है,
1: जी बहुत चाहता है कि सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता।
0: क्या बात है,
1: क्या करें हौसला नहीं होता।
0: बहुत अच्छा,
1: ये हमारी अपनी मजबूरियां हैं
0: जी जी,
1: इसको आप एंजॉय करें
0: जी। सर, यहीं से मैं एक सवाल और करना चाहूंगी कि आपने कहा अभी कि तैयारियों का दौर था, मैं उन युवाओं के लिए बात करना चाहती हूं कि जो इस समय बेकारी के दौर में भी हैं और तैयारी के दौर में भी हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका हौसला बरकरार रहे।
1: देखिए, पहली बात, युवाओं को निराश होने की जरूरत ही नहीं है, ये पीढ़ी आपकी है, ये बदलाव आप लेके आएंगे। अगर हम कहते हैं देश विकास कर रहा है, देश विकास के पथ पर है
0: जी,
1: तो वो आपके ही माध्यम से है
0: जी। बिल्कुल,
1: व्यवस्थाएं आप बना रहे हैं, व्यवस्थाएं आप ही बिगाड़ेंगे
0: जी।
1: लेकिन आज की युवा पीढ़ी थोड़ा सा दिग्भ्रमित होती जा रही है, सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं
0: जी जी,
1: ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये रील्स, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सअप, ये अपना समय उस पर बर्बाद कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: मैं कहता हूं कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखिए जीवन में, ये समय बहुत क्रूशल है। अगर आप 18 से लेके 25 साल, 26 साल, 10 साल अपने जीवन को दे दीजिए, पूरे जीवन का सारा रस निकाल के लगा दीजिए अपने करियर बिल्डिंग में
0: जी जी,
1: सही जगह बात करें, सही काउंसलिंग करें, खूब पढ़ें
0: जी,
1: निराश होने की जरूरत नहीं है। असफलता होगी, लेकिन असफलता में ही सफलता छुपी है।
0: बिल्कुल सर,
1: अगर असफलता को आप निकालें तो निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता,
0: नहीं लगता।
1: अगर आपका प्रयास सही दिशा में और सही तरीके से है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सही है
0: जी,
1: तो असफलता से और ज्यादा देर नहीं लगती निकलने में।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल,
1: वो सफलता में तुरंत परिवर्तित होती है। तो दोस्तों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ये रील का जमाना, जब आप नौकरी पा जाइएगा, बढ़िया जीवन जीनेगा, 30 साल के बाद भी रील रहेगी, उस समय रील देख लीजिएगा। अभी रील देख के अपना भविष्य दांव पर मत लगाइए, और अपना पोटेंशियल पहचानिए पहले, आप कर क्या सकते
0: हैं। कर क्या सकते हैं, बिल्कुल सर।
1: अगर जिस चीज में आपकी रुचि हो वही कार्य करिए, जबरदस्ती किसी के थोपने से कोई कार्य मत करिएगा
0: जी।
1: आपको अगर मैथमेटिक्स नहीं आती है तो हम लाख प्रयास कर लें, आप मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। आपके अगर संगीतकार छुपा हुआ है तो उसको ही उभारिए, उसको ही अपना प्रोफेशन बनाइए। पहले अपना सेल्फ अप्रेजल कर लीजिए, हम क्या कर सकते हैं। माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ काउंसलिंग करिए, डायलॉग करिए, उसके बाद अपना करियर तय करिए कि हमें किस दिशा में जाना है। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, आपको पता है IAS बनना कितना मुश्किल है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है। अगर आप में वो क्षमता है तब उस दिशा में, उस फील्ड में उतरिए
0: जी। बिल्कुल,
1: अन्यथा आप अपना समय बर्बाद मत करिए, समय बहुत क्रूशल है, वापस लौट के नहीं आएगा। तो दोस्तों, निराश की हमारे आपके जीवन में कोई जगह ही नहीं है, बस हमें समय और उसकी महत्ता को पहचानना है और उस दिशा में प्रयास करना है।
0: सर, युवाओं की बात हो रही है और हम लोग आकाशवाणी पर ये वार्ता कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अपनी पसंद का कोई गीत जो हमारे युवा श्रोता, विशेष तौर पर ऐसा नहीं है कि इनकी आजकल की पसंद का, जो आपको कभी पसंद रहा हो, मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को वो गीत सुनवाएं।
1: मुझे तो नहीं।

0: जमाने के गीत याद ही नहीं है।
1: नहीं सर,
0: मुझे आपका पुराने जमाने में जो गीत, वो आज भी अजर अमर गीत है।
1: बिल्कुल सर,
0: मेरी दो बेटियां हैं, वो लता, रफी, मुकेश, किशोर को नहीं पसंद, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने उनको सुना तो आजकल के नए गीतों के जगह वो सारी पुराने गीतों ने ले ली। मुझे एक गीत बहुत ज्यादा पसंद आता है
1: जी,
0: तीसरी कसम फिल्म का है, आपको याद होगा
1: जी,
0: सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है,
1: बहुत अच्छा गीत है।
0: तो वो अगर गीत आप बजाएंगे, हमें ऊपर जाके जवाब देना है हमने इस दुनिया में रहकर क्या किया
1: जी।
0: तो झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए, और जो कर रहे हैं ऊपर वाला सब देख रहा है।
1: श्रोताओं, जीवन से जुड़ा और हमारे जो कर्म है, हमारे जो आदर्श हैं और जिन राहों पे खास करके हमको चलना है आगे, वैसा गीत है। तो हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता ये गीत सुने।

0: सर, ये जो आकाशवाणी की हम बात कर रहे हैं, आकाशवाणी अपनी गंभीरता, अपनी विश्वसनीयता, अपना उल्लास, अपना उत्साह, अपना समर्पण, इन सब के साथ आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे किए हैं। मैं चाहूंगी कि उसकी यात्रा कैसी रही, ये इस पर आप एक बार जरूर हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: आकाशवाणी की जो यात्रा है ये 90 वर्षों की, ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। हम एक लीगेसी कैरी कर रहे हैं और बड़े अच्छे समय से गुजरते हुए हम 90 वर्षों का सेलिब्रेशन कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: विभिन्न चुनौतियों से पार पाते हुए, जैसे मैंने बताया कि हम पहले मीडियम वेव पे थे, फिर शॉर्ट वेव पे आए, शॉर्ट वेव

0: एफएम पे आए, एफएम से हम ओटीटी पे आए, ओटीटी के साथ हम ऐप पे आ चुके हैं, अब सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस है। आपको याद होगा, मुझे याद आता है, अपना बचपन याद आता है, सन 77-78 का
1: जी,
0: जब क्रिकेट की कमेंट्री हुआ करती थी तो सुशील दोषी बोलते थे कि भारत इंग्लैंड का मैच चल रहा है, जो लोग हृदय से कमजोर हो, जो हार्ट के पेशेंट हो, वो अपना रेडियो स्विच ऑफ कर लें।
1: बिल्कुल सर,
0: क्योंकि गावस्कर सेंचुरी बनाने वाले, हो सकता है आउट हो जाए, तो लगता था आप मैदान में बैठकर उसको महसूस कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सर,
0: जसदेव सिंह की कमेंट्री होती थी भारत पाकिस्तान के हॉकी मैच की, तो जब मोहम्मद शाहिद और बाकी ट्रबल करते थे तो वो कमेंट्री आपको ट्रबल कराती महसूस होती थी। तो ये हमारी आकाशवाणी, आपको याद होगा 15 अगस्त 26 जनवरी के हमारे प्रसारण, लगता है आप राजपथ पे बैठे हैं।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल,
0: आप किसी भी देश के किसी कोने में बैठे हैं, हमारे प्रसारण को सुनिए, वो जो वार्ता होती है, जो कमेंट्री होती है, वो लगता है कि आपको उस राजपथ तक लेके जाती है, तो ये हमारी गर्व का विषय है।
1: बिल्कुल सर,
0: तो इस तरह की बहुत सी चीजें, हमारे जयमाला कार्यक्रम, हमारे कृषि दर्शन के कार्यक्रम, महिलाओं की बात, हमारे हेलो डॉक्टर, हम जीवन के हर पहलू को छूते हैं, जिस पहलुओं पे बाकी लोग बात नहीं करना चाहते, हम आपके मन की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के मन की बात जो करते हैं
1: जी,
0: उनके मन की बात नहीं होती, जनता के मन की बात होती है, लेकिन आकाशवाणी के माध्यम
1: से होती है। बिल्कुल सर,
0: तो वो आकाशवाणी से ही क्यों करते हैं? क्योंकि आकाशवाणी एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है
1: जी।
0: और आज भी आपको बताऊं, चाहे हम कितने भी पिछड़ गए हों, रेवेन्यू मॉडल हमारा उतना अभी सक्सेसफुल ना हो, लेकिन क्रेडिबिलिटी हमारी आज भी टॉप पर है, पहुंच हमारी सबसे ज्यादा है
1: जी।
0: गांव में आपको किसान अगर सुनते मिलेगा, वो आकाशवाणी सुनता मिलेगा।
1: बिल्कुल सर,
0: बॉर्डर पे जो जवान होगा वो हमारे आकाशवाणी सुनता मिलेगा, जयमाला कार्यक्रम,
1: बिल्कुल,
0: विविध भारती के कार्यक्रम
1: जी।
0: ये हमारी लिगेसी है, इसको हमें थोड़ा सा संजोना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, लोगों की चाहत क्या है उसके हिसाब से एक फ्लेवर चेंज करना है, बाकी जो हम करते आए हैं उसको नए तरीके से प्रेजेंट करना है, बस इतना एफर्ट करना है, उस दिशा में हमें लग रहा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी बहुत सुखद परिणाम आने भी वाले हैं और कुछ कुछ परिलक्षित भी हो रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, 90 वर्ष की ये यात्रा बहुत सुखद रही है और आगे चुनौतियां सर आती रहती हैं, आती रहेंगी, लेकिन मैं इसी बीच में चाहूंगी कि एक गीत आप हमारे श्रोताओं को, और जो आपको बेहद पसंद हो, जो आपके मन को बहुत भाता हो, बहुत करीब रहा हो।
0: देखिए, मैं राम की नगरी में बैठा हूँ, अयोध्या धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र है
1: जी,
0: पिछले 25 वर्षों से भारत की राजनीति और धार्मिक व्यवस्था का केंद्र है, जन जन की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है
1: जी।
0: भगवान राम का जो मंदिर निर्माण हुआ है, आस्था के ऊपर एक मुझे एक गजल याद आती है, वो गजल जरूर बजाइएगा, जगजीत सिंह की गाई हुई गजल है, बशीर बद्र का शेर है
1: जी।
0: सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा,
1: वाह।

0: गए हैं। शंकर जी के पिंड पे हम लोग जाके पूरा माथा नतमस्तक हो जाते हैं, तो पत्थर ही
1: जी।
0: लेकिन उसमें हमें भगवान दिखते हैं,
1: दिखते हैं बिल्कुल सर।
0: तो बस हमने आस्था लग रही उसको मान लिया कि शंकर जी हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, तो आस्था का प्रतीक है। तो ये गजल आप बजाएं तो बड़ा हमारे ख्याल से श्रोता भी आनंदित
1: बिल्कुल सर।

0: चलते चलते आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे सर कि प्रसार भारती की जो आगामी योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं।
1: ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत सटीक प्रश्न है जी। हमारी जो योजनाएं हैं वो विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो रही हैं, परिलक्षित हो रही हैं
0: जी।
1: वो योजना मुख्य रूप से हमारी केंद्रित है टेक्नोलॉजी के साथ अपने को अपग्रेड करना
0: जी।
1: पहला टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड इनोवेशन
0: जी जी।
1: दूसरा कंटेंट इनोवेशन एंड कंटेंट क्रिएशन, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट, लेकिन हाँ याद रखिए राइडर के साथ,
0: बिल्कुल
1: हेल्दी कंटेंट, प्रॉपर कंटेंट
0: जी जी,
1: नो वल्गरिटी
0: जी।
1: आपको वल्गरिटी देखना हो तो दुनिया में और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको हम आपके तरीके से जो कंटेंट बनाना, तो वो हमारा फोकस है कंटेंट पे। तीसरा रेवेन्यू मॉडल
0: जी,
1: हम कॉमर्शियली रन करना चाहते हैं अपने संस्थान को
0: जी जी।
1: पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, भारत सरकार से हमको सपोर्ट मिलता है
0: जी,
1: ग्रांट्स के माध्यम से
0: जी।
1: लेकिन हम अपने राजस्व के बल पर ही अपने ऑपरेशनल कॉस्ट बियर करते हैं
0: जी।
1: तो हमें रेवेन्यू मॉडल को इवॉल्व करना है, उसमें हम लोग बहुत लगे हुए हैं। अपने कंटेंट को कैसे अच्छा

0: ऐसा बनाए ताकि हमें अच्छे एडवर्टीजमेंट्स मिले, अच्छा रेवेन्यू हम जनरेट कर पाए। तो तीन चार मुख्य एरिया हैं, तो हमें लगता है कि जब हम धीरे धीरे इन सब चीजों पर कार्य कर पाएंगे, एचआर मैनेजमेंट, हमारा जो स्टाफ है उसके ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, रिटायरमेंट, पेंशंस, ये भी हमारा हेल्दी होना चाहिए और समय से उसको मिलना चाहिए ताकि हमारी टीम के लोग सेटिस्फाइड रहें। ये तीन चार लिस्ट तो बहुत लंबी है
1: जी, जी, जी।
0: तो हमारे मुख्य बिंदु ये हैं
1: जी। श्रोताओं, दो पंक्तियां मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि मन का पत्र नहीं रीता है, हुआ बहुत कुछ अंकित, जिसकी जितनी अभिलाषा हो कर सकता है संचित। ये पंक्तियां श्रोताओं हमारे इस बातचीत के संदर्भ में थी कि आप जो कुछ भी इसमें से आपको अच्छा लगे आप उसे आत्मसात करते रहें और आप उसको लेकर अपने जीवन में आगे चलें। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपको हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत आभार उषमा जी आपका, आकाशवाणी अयोध्या आपका, कि आपने मुझे मौका दिया प्रसार भारती को अपने पक्ष को रखने का। और मैं श्रोताओं आपके साथ इस वक्तव्य के साथ विदा लेना चाहता हूं कि आकाशवाणी अयोध्या आपसे जुड़कर, आपके मन की बात कहकर और आपको आपके तरीके से चीजों को प्रस्तुत कर आगे बढ़ना चाहता है। आप हमको हमारी कमियां बताएं विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, और मैं आपको ये वादा करता हूं हम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। आकाशवाणी अयोध्या हमेशा आपकी सेवाओं में तत्पर है। श्री राम की नगरी अयोध्या से मैं आकाशवाणी अयोध्या से विदा लेता हूँ। परमपिता परमात्मा श्री राम की सब पर कृपा बनी रहे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद उषमा जी आपका।
1: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष भेंट वार्ता। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी अयोध्या के स्टूडियो में श्री अनिल श्रीवास्तव, अपर महानिदेशक प्रसार भारती से उषमा वर्मा द्वारा की गई बातचीत। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।
3: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
4: सुनिए,
5: कहिए, कहिए,
4: सुनिए।
6: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक, आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम शाम सुहानी में क्षमा कीजिएगा, गीत गुंजन में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए अपने दोस्त गिरिजेश निषाद का नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत गुंजन, जहां हम लेकर आते हैं कुछ रोचक किस्से जिनसे जुड़ी होती हैं यादें, संगीत और इतिहास की खूबसूरत झनकार। दोस्तों जरा सोचिए, अगर हिंदी फिल्मों में गाने ना होते तो क्या राज कपूर की मासूमियत उतनी प्यारी लगती? क्या राज कपूर की फिल्मों का जादू वैसा रहता? या फिर राजेश खन्ना की मुस्कान पर गुनगुनाते गीत दिलों में उतर पाते? शायद नहीं।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा की शुरुआत मूक फिल्मों से हुई, यानी पर्दे पर कलाकार अभिनय करते थे लेकिन आवाज नहीं होती थी। फिर आया वर्ष 1931 और रिलीज हुई भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। इस फिल्म के निर्देशक थे आर्देशर ईरानी। और इसी फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा को मिला पहला गीत, जिसके बोल थे दे दे खुदा के नाम पर प्यार। अभिनेता थे वजीर मोहम्मद खान। और फिलहाल तो हम गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आप आए बाहर आई से, आवाज है मोहम्मद रफी की।

यहाँ हिंदी सिनेमा और गीतों का रिश्ता आत्मा और धड़कन जैसा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में गाने शुरू कैसे हुए? आइए आज इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं। फिल्मों में जब नायक नायिका का प्रेम दिखाना हो, जब जुदाई का दर्द सुनाना हो, जब खुशी का उत्सव मनाना हो, तब गीत सबसे आसान और असरदार माध्यम बन गए। एक गीत कई संवादों से ज्यादा असर छोड़ देता था। आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म आरजू से आवाज है अलका याग्निक और कुमार सानू की।

0: दोस्तों अभी कुछ बातें और शीर्षें, फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद आते हैं फिर कुछ बातें कुछ गीत।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: अच्छा दोस्तों, उस दौर में रिकॉर्डिंग मशीनें आज जैसी आधुनिक नहीं थी। कलाकार कैमरे के सामने अभिनय करते करते लाइव गाना गाते थे। भारतीय फिल्मों में गाने आने का भी मकसद था, क्योंकि भारत सदियों से संगीत प्रेमी देश रहा। यहां लोकगीत, भजन, नौटंकी, धार्मिक नाट्य मंचन और पारसी थिएटर जैसी परंपराएं पहले से मौजूद थी। लोग कहानी के साथ संगीत सुनना पसंद करते थे। फिल्मकारों ने समझ लिया कि जहां संगीत है वहीं दर्शकों का दिल है, इसीलिए फिल्मों में गानों को शामिल किया गया। और अब आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म दावती फायर से। आवाज है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और आज हम बात कर रहे हैं कब क्यों और कैसे शुरू हुआ हिंदी फिल्मी गानों का सफर। उसी कड़ी में हम अगली बात करते हैं आपसे कि पार्श्व गायन की शुरुआत यानी गायकों के द्वारा स्टूडियो में गानों को रिकॉर्ड करने का 1935 में शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती दौर में कलाकार खुद गाते थे, लेकिन 1935 में फिल्म धूप छांव में पहली बार प्लेबैक सिंगिंग हुई। अब गायक स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते और अभिनेता पर्दे पर अभिनय करते। यहां से शुरू हुआ हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम सफर। और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आंदोलन से, जिसे आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक।

0: फिल्म आंदोलन की इस गाने के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन अब समाप्त होता है।
1: हेलो
2: सुनो टेलीफोन नंबर
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
5: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
4: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, आकाशवाणी अयोध्या।
6: घर घर जन जन।

0: इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
1: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
2: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान।
3: यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं समाचारों का बुलेटिन समाचार संध्या।
0: ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: AYODHYAR
4: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
5: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
4: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
5: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
4: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों

0: किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बने संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI

हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया।

0: गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashwani and I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.

0: Asian filtrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
1: समाचारों का बुलेटिन हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल गजल।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक, तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुँचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: कार्यक्रम की पहली गजल को आवाज दे रहे हैं सोनाली राठौर।

0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गई इस गजल के साथ ही हमारा आज का गजलों का कार्यक्रम महफिल ए गजल अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
2: अब के शहर में भरोसेमंद इलाज
3: कैंसर हृदय डायलिसिस हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायबरेली रोड अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
0: नमस्कार आदाब दोस्तों, रेडियो की इस प्यारी सी दुनिया में मैं हूं आपका दोस्त और हम सफर गिरिजेश निषाद। अल्फाजों में असर हो तो बात बन जाती है। रेडियो पर दिल से निकली हर आवाज याद बन जाती है और हमारे इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए कौन आ चुका है आइए इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
4: हेलो, फूलों की ताजगी चांद की चमक आकाशवाणी अध्याय खुशियों का कमल। नमस्ते सर।
0: शुक्रिया। और आपका शुभ नाम?
4: अनु पांडे गोंडा से।
0: जी अनु जी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस फोन इन कार्यक्रम में। और पहले बता दीजिए गाना कौन सा सुनेंगे?
4: सर मुझे गाना सुनना है, अक्सर मूवी का चला दिखाया जाए।
0: तो गाना तो बेशक हम आपको सुनवाएंगे लेकिन झलक किसकी मिल गई है क्योंकि इस समय जिस कदर गर्मी पड़ रही है धूप अपनी तपिश को बेहद बेदर्दी से हम लोगों को ये ऊपर सवार है तो ऐसे में क्या महसूस कर रही हैं?
4: तो समझ लीजिए झलक तो गर्मियों की मिली हुई है और हर पल ख्वाबों ख्यालों सोते जागते हर वक्त गर्मी ही गर्मी खपत रहती है।
0: गर्मी के अलावा और कोई एहसास दिमाग में आ ही नहीं पा रहा है,
4: आने ही नहीं दे रही है गर्मी। इतनी आवी हो चुकी है।
0: अच्छा ये बताइए अनु जी, आप कहाँ रहती हैं?
4: सर मैं तो गोंडा में रहती हूँ।
0: गाँव है या शहर?
4: गांव है।
0: तो आपके गांव में आपके कुछ जानवर वगैरह भी होंगे घर में या नहीं?
4: घर में भी जानवर है और मेरा गांव थोड़ा जंगली इलाका पड़ता है, बहुत ज्यादा तो नहीं पर मतलब की थोड़ा बहुत है तो जंगली जानवर भी रहते हैं।
0: तो इस गर्मी में, हाँ इस गर्मी में उन पशुओं के लिए उन जानवरों के लिए क्या कुछ आप लोग करते हैं?
4: सर हम लोग मतलब कि खाने पीने की व्यवस्था तो पर्याप्त करते ही करते हैं खाने के लिए, उसके साथ साथ जल की व्यवस्था भी करते रहते हैं टाइम टाइम से क्या रोज करना पड़ता है उस घर पे जो जानवर है उनके लिए भी और जो मतलब पालतू नहीं है उनके लिए भी और जो पंछी है उनके लिए भी। लेकिन सर पंछियों के साथ तो बहुत अच्छा लगा दिखता है और मतलब कि मेरा फायदा हो जाता है। जैसे हम सब्जियों की खेती भी है जैसे खुद के खाने के लिए होती है तो उसमें जब पानी लगाते हैं ना

0: तो पंछियाँ ढेर सारी आ जाती है, पानी भी पीती और नहाती भी और रोज पानी सब्जी
1: देखना पानी ये सब कुछ देखना ये सब देखना बड़ा अच्छा लगता होगा।
0: हाँ बहुत अच्छा लगता है।
1: और साथ ही हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि इतनी तेज धूप और इस कदर गर्मी में पशुओं की देखभाल हम सभी लोगों को विशेष रूप से करना चाहिए, है ना?
0: जी सर, सबको ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो जानवर नहीं पाले हुए हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, अपने घर के आसपास थोड़ी सी पानी की व्यवस्था हर रोज करते रहें।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: एक दिन कर दे तो फिर दो चार दिन ना करें, हर रोज करते रहें।
1: ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और
0: आपकी खुद को ही बचा के रखिए और ज्यादा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: निकले,
1: बहुत जरूरी है।
0: जो जॉब वाले हैं उनको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो कुछ तरफ सरकार खाते पीते रहे आराम से फिर
1: पहुँच जाते रहे। हाँ तो चलिए, अब आपकी पसंद का गाना हमने पहुंचा दिया है आप तक। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके सर, बाय
1: बाय। अनु जी ने फोन किया था कोंडा से, हमारी नियमित श्रोता और कॉलर।

0: सुना है बात करने से हल्का हो जाता है दिल, और हमारे एक श्रोता अगर मौजूद हैं तो इससे बातें कर लेते हैं, देखते हैं इनका भी दिल हल्का होता है या नहीं। हेलो।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: सर मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति है।
0: जी सुनील जी, कहाँ से फोन किया आपने?
1: जिला बस्ती से सर।
0: बस्ती से। अच्छा, अब तक हाँ। आपने कितनी बार कॉल लगाई होगी और लग गया है?
1: हाँ सर, लग जाता है अगर हम लगाते हैं तो।
0: लग जाता है।
1: हाँ सर।
0: तो हमारा ख्याल है कि लगभग लोग

0: से बात हो गई होगी आपकी?
1: नहीं सर, अभी पूरे लोग नहीं हुआ।
0: अच्छा सर, मतलब जब तक सारे लोगों से कोटा आपका पूरा नहीं हो जाएगा आप लगाते रहिए। खैर लगाते रहिए क्योंकि कार्यक्रम अभी का है। जी
1: नहीं, अब समझ गया सर, अब जैसे आप बोले हैं ऐसे करें।
0: जी जी, सुनील जी कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: दलाल फिल्म का सुना दीजिए सर।
0: दलाल फिल्म का कौन सा गाना?
1: ठहरे हुए पानी पे कंकर मत मारता, ये गाना।

0: पानी पे कंकर मत मारता और ये गाना।
1: बिल्कुल, ये गाना हम आपको सुनवा देंगे। और सुनील जी, करते क्या हैं आप?
0: सर मैं रिलायंस जियो के प्रोजेक्ट में काम कर रहा था फाइबर में, तो इस समय घर पे हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य नहीं ठीक है।
1: ये जो काम आप करते थे उसमें काम क्या होता है ये बता दीजिए।
0: काम सर ये नेटवर्क का जो अंडरग्राउंड होता है एलडीडी,
1: अच्छा
0: मशीन द्वारा किया जाए यही, उसमें फिर केबल पड़ता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए। हमारे यहाँ राम पथ पर और इसके अलावा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर भी इस तरह के काम चल रहे हैं जी। तो काफी मुश्किल काम है, लेकिन मशीन से ये सब काम किए जाते हैं ना?
0: हाँ तो मशीन से ही होता है, लोकेट डीडी वही मशीन से ही होता है। गड्ढे के लिए लेबल लगाए जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, काफी टेक्निकल काम है। तो इस काम को आपने कहीं सीखा होगा?
0: हाँ सर,
1: ये काम कहीं सीखा होगा आपने?
0: हाँ सर सीखना पड़ा, उसके बाद सुपरवाइजिंग कर रहे थे।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सुनील जी, आपकी पसंद का गाना हमने पहुंचा दिया है आप तक, फिल्म दलाल का।
0: ठीक है, नमस्ते सर।
1: नमस्कार, फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: जी हाँ दोस्तों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नंबर डायल करना होगा 7376-8040-90 और हमारे एक श्रोता लाइन पर आना चाह रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: मंजू वर्मा।
0: जी मंजू जी, आप तो अक्सर कॉल करती थी, लेकिन इधर शायद काफी दिनों से आपने कॉल नहीं किया है।
1: लेकिन उठा नहीं।
0: तो चलिए, फोन आज आपका लग गया है और आपसे बातें भी हो रही हैं। आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: भीगी पलके का।
0: आप काफी उदास सी लग रही हैं।

0: थकी थकी सी हैं। क्या बात है?
1: कुछ नहीं, अच्छा लगता है।
0: अच्छा आप हमारी बात समझ नहीं पाई। चलिए, आपकी पसंद का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और फिल्म भीगी पलके का, जिसे आवाज दे रहे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। नमस्कार, फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: जी हाँ दोस्तों, आप भी हिस्सा हो सकते हैं। 7376-4090 नंबर मिलाकर। फिलहाल हमारे एक श्रोता लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो,
1: हाँ नमस्ते सर, मैं अविनाश यादव, आज मान का पूर्व पारा ताजपुर हैविंगटन गंज।
0: जी जी यदुनाथ जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और कॉलर भी हैं और आप शिक्षक भी हैं।
1: जी सर।
0: तो आज 20 मई है और आज से हमारा ख्याल है विद्यालय भी बंद हो गए होंगे।
1: जी सर, बच्चों के लिए बंद हो गए हैं और हम लोगों के लिए तो मकान गणना करनी है।

0: हाँ, लेकिन बच्चों को आपने आज विदा करने से पहले कुछ हिदायतें दी होंगी, कुछ नसीहत दी होगी।
1: जी सर, कल ही बंद हुआ है, तो जो कुछ बताना था कल ही बताएगी, जो है अपना अपने सेहत का ख्याल रखिएगा।
0: जी जी,
1: अगर मामा के यहाँ जाना हो तो कुछ ही दिन जाइए, उसके बाद फिर पढ़ते रहिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे ज्यादा।
0: जी जी,
1: काज वगैरह दिया गया और 27 दिन के लिए बंद हुआ है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी, 16 जून को खुल जाएगा।
0: 16 जून को खुल जाएगा?
1: जी जी जी, 16 जून से खुल जाएगा।
0: तब तक तो गर्मी हमारा ख्याल है बहुत चरम पर होगी, वैसे भी अभी से गर्मी इतनी ज्यादा पड़ने लगी है।
1: ये सर कई सालों से अब ऐसा ही है, अब वो नहीं कि 1 जुलाई को जो खुलता है वैसे है।
0: और आप परिषदीय विद्यालय में हैं, गांव में पोस्टेड हैं।
1: जी,
0: तो ऐसे में तो बच्चे बड़े दूर दूर से आते होंगे वहाँ पर।
1: जी सर, छोटे बच्चे तो बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को, लेकिन यह है कि थोड़ा समय 12:30 बजे तक ही बच्चों के लिए रहता है, लिया जा गर्मी पड़ती है लेकिन चले जाते हैं, सुबह 7:30 से 12:30 रहता है।
0: जी जी जी, तो यदुनाथ जी आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: सर मुकद्दर का सिकंदर का सुना दीजिए सर।
0: कौन सा गाना? हाँ ठीक है, ये गाना बहुत अच्छा है किशोर कुमार की आवाज में, तो ये गीत पहुंचा दिया हमने आप तक। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। और इस समय अपने रास्ते को आसान बनाने के लिए कौन आ चुका है हमारे पास, तो हम बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मैं प्रीति राय बात कर रही हूँ, कर्मा कुरड़ी अयोध्या से सर।
0: जी प्रीति राय जी, आपकी आवाज पहली बार हमारे पास पहुंची है फिलहाल, हो सकता है इससे पहले भी आपने ट्राई किया हो, कोशिश किया हो, कभी बात हुई आपकी?
1: नहीं सर, आपसे तो पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा, इससे पहले कितनी बार आपकी कॉल लगी है?
1: सर ये सातवीं बार मेरी कॉल लगी है।
0: अरे वाह, बड़ी खुश नसीब है आप।
1: लेकिन सर सुबह ही लगती है, इस टाइम पहली बार लगी है।
0: हाँ, सुबह लग जाना आसान होता है क्योंकि सुबह श्रोता कम होते हैं या कॉलर कम होते हैं और इस समय ज्यादा भीड़ होती है। चलिए, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: सर हमें बाबू मुंडी का सॉन्ग सुना दीजिए, लता जी की आवाज में, ऐ हवा मेरे संग संग चल।
0: गाना बहुत अच्छा है। क्या करते हैं प्रीति जी आप?
1: सर पढ़ाई करते हैं, ट्राई करते हैं और अपने घर का कार्य करते हैं।
0: पढ़ाई करती हैं, तो पढ़ाई किस क्लास की चल रही है इस समय?
1: इसमें ग्रेजुएशन।
0: ग्रेजुएशन,
1: यस।
0: और गाने आपने सुनना चाहा है पुरानी फिल्म का, तो जाहिर सी बात है कि आप एक गंभीर श्रोता भी हैं। चलिए, आपकी पसंद का गाना हमने पहुंचा दिया आप तक। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गुड नाइट सर।
0: गुड नाइट।

0: तमाम जानकारियां मिलती हैं।
1: तो आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: वो भी फिल्म का सुना दीजिए, चुपके सब साथी दुखने में कोई।
1: जी बिल्कुल, आपको ये गाना सुनवा रहे हैं फिल्म गोपी से, और फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
2: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या। अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
7: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें। गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
3: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
7: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
3: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
7: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
3: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और आज आपके साथ है आपका दोस्त गिरिजेश निषाद। फिलहाल हमारे साथ एक श्रोता लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: सरस्वती सिंह बात कर रहे हैं, अंबरपुर मनकापुर गोंडा से।
0: जी, आप हमारी नियमित श्रोता हैं, नियमित कॉलर हैं।
1: जी सर।
0: और हमारे कार्यक्रमों को बड़ी शिद्दत से आप सुनती हैं।
1: हाँ सर, बहुत सुनते हैं अच्छे से सर। बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम भी आता है, बहुत अच्छा लगता है सब।
0: क्या अच्छा लगता है ये बताइए
1: सर। हमको ऐसे आकाशवाणी अयोध्या के सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, और खास करके तो सर श्याम सुहानी, गीत गुंजन और सुबह अमृत कलश और युवाड़ी, सर ये सब प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। फोनिंग प्रोग्राम भी जितने आते हैं सारे अच्छे लगते हैं।
0: तो
1: जी
0: कुछ,
1: सर कुछ सर, आज आप गीत गुंजन जो किए थे और श्याम सुहानी, सर बहुत ही सुपर प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा था।
0: जी शुक्रिया इसके लिए। लेकिन कार्यक्रमों से कुछ आपको हासिल भी होता है, सीखने को कोई जरिया जैसा महसूस होता है, कुछ सीखना हो पाता
1: जी,
0: है?
1: हाँ सर कुछ सीखना हो पाता है। हाँ सर, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे आप लोग बॉलीवुड फिल्म के बारे में बताते हैं तो उनकी भी जानकारियाँ होती हैं, और सर जैसे जो भी बताया जाता है उसमें आकाशवाणी में, तो सर हम लोग को जानकारी होती है। अमर जी सर आते हैं तो उसमें खेल खिलाड़ी ज्यादा एक बात बताते हैं थोड़ा बहुत,
0: जी।
1: तो सर अच्छा लगता है जानकारी, हर अलग अलग एंकर्स अलग अलग जानकारी देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है।
0: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको कुछ और भी एंकर का नाम पता है? नाम किसी का लेना नहीं है, नाम किसी का नहीं लेना है, लेकिन नाम किसी और का पता है आपको?
1: जी सर, सबका नाम पता है हमको।
0: हाँ तो औरों का भी जिक्र कर दिया करिए, कभी कभी लोग नाराज हो जाएंगे।
1: हाँ सर, तो सर सारे एंकर अच्छे हैं और सबका नाम भी जानते हैं सर, लेकिन ऐसे दो चार एंकर सर जिनके प्रोग्राम हमको सर खास करके बहुत ही अच्छे लगते हैं।
0: किसी एक का नाम बार बार आप लेंगी तो उसको गलतफहमी हो जाएगी कि वास्तव में वो बहुत काबिल है।
1: हाँ सर ये तो बात है।
0: और लोगों का उत्साह उससे ठंडा हो जाता है, है ना?
1: जी सर।
0: गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: सर साजन बिना सुहागन का गाना सुनना है।
0: जी चलिए गाना हम आपको सुनवाते हैं, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सर, थैंक यू। नमस्ते सर।
2: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसान वाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
3: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
4: जब भी बाहर निकलें कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
3: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
4: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
3: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
4: याद रखिए, आपकी सतर्क

0: जो भी प्यार से बात करेगा वही दिल जीत लेगा। और हमारे एक श्रोता लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: जी। हेलो सर, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, आपका शुभ नाम?
1: जी सर, अजीता राव, बस्ती जिले से।
0: जी आपका स्वागत है अजीता जी, काफी समय बाद हमसे आपकी बात हो रही है ना?
1: हाँ सर, बहुत दिनों बाद बात हो रही है। क्या 5-6 महीना हो गया होगा सर? और ज्यादा भी।
0: बहुत समय हो गया है। और तो इस समय गर्मी तो काफी पड़ रही है।
1: हाँ सर जी, गर्मी तो बहुत पड़ रही है।
0: और तो घर से बाहर निकलना इस समय ठीक भी नहीं है बिना किसी काम के।
1: जी सर, बिना काम के घर से बाहर मत निकले तो बहुत अच्छा है।
0: और घर में
1: निकले तो पानी नहीं पी के निकले,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: छाता भी या कुछ भी लेके निकले, ऐसा डर के निकले।
0: अच्छा ये बताइए, आप कुछ

0: कुछ आपने ऐसी व्यवस्था की है जो अपने घर के आसपास, जिससे जो पशु इधर उधर टहलते रहते हैं, या फिर आपके घर में भी हो सकता है कि पशु हो?
1: नहीं सर, पशु थे सर है नहीं, लेकिन सर रखते हैं पानी,
0: रखते हैं
1: बाहर रखते हैं।
0: बहुत
1: के लिए भी रखते हैं, डॉग के लिए भी रखते हैं।
0: क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और ऐसे में हर व्यक्ति तो अपनी व्यवस्था कर लेगा, लेकिन जानवर कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे?
1: हाँ सर, सही
0: तो
1: बात
0: उनके
1: है।
0: लिए व्यवस्था हम लोगों को ही करना पड़ेगा।
1: जी सर।
0: आज गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: सर पिक्चर का नाम है धड़कन, गाने की बोल है अक्सर इस दुनिया में।
0: जी, ये गाना हम आपको जरूर सुनवाएंगे अलका याग्निक की आवाज में। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गाना और हमारे सभी सुनने वाले भी सुने ये गाना।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, हमारे आज के इस सजीव फोनिंग कार्यक्रम को तकनीकी सहयोग दिया अरविंद कुमार जी ने, और समय समाप्त होने को है, तो अपने दोस्त गिरिजेश निषाद को अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। अब आपको लिए चलते अपने दिल्ली केंद्र सुनते समाचारों का बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और

0: सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Bongyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honored with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honor to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action and coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. India is said to remain the world's fastest growing